0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कंसेंट एक सिंपल सा छोटा सा शब्द है, लेकिन इंडिया में ना मुझे लगता है इसका जो मीनिंग है वो बहुत एम्बिग्यूअस है, स्पेशली आदमी लोगों के लिए. सो आई मेट दिस गाय ऑन अ डेटिंग ऐप. ये 3-4 साल पहले की बात है. एंड आई टोल्ड हिम ही वाज रियली नाइस, लेकिन आई वाजंट इंटरेस्टेड इन डेटिंग हिम. शायद हम दोस्त बनकर रह सकते थे. टू विच ही सेड कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू रोमांटिकली, लेकिन आई विल चेक इन विद यू एवरी लाइक 3-4 मंथ्स की तू रेडी है, हो सकता है तू हाँ बोल दे. इनिशियली मुझे लगा काफी क्यूट है, वाई नॉट. तो वो हर 3-4 महीने में मुझे मैसेज करके मुझसे बात करने की कोशिश करता था, बट ही काइंड ऑफ रियलाइज दैट आई हैड स्टिल फ्रेंड ज़ोन्ड हिम. तो अभी कल की बात है, ही टेक्स्टेड मी. अब इस बात को 3 साल हो गए हैं व्हेन ही जस्ट लाइक रैंडमली टेक्स्ट मी एंड ट्राइज टू फिगर आउट कि क्या मैं उसे डेट करना चाहती हूँ. और कल जब ही रियलाइज की 3 साल की मेहनत के बाद भी आई वॉज स्टिल पुटिंग हिम इन द फ्रेंड जोन, वो एक्चुअली मुझसे गुस्सा हो गया. एंड ही स्टार्टेड सेइंग दैट गर्ल्स लाइक मी डोंट डिजर्व लव, क्योंकि अगर लव उनकी खिड़की पर आकर खटखटा रहा है तब भी मैं अपनी खिड़की नहीं खोल रही हूँ. एंड आई एम लाइक शायद माई वर्जन ऑफ लव इज नॉट यू, लाइक डोंट यू गेट दैट. बट उसे ऐसा लगता है कि उससे बड़ा और उससे महान इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, और उसके प्यार को ठुकरा कर आई डोंट डिजर्व लव. अब आप बताओ कि अगर आप मेरी जगह होते तो

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Murga, murga. La virpa, la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Mirchi.
4: It's Navid.
3: बोल रहा हूँ.
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
3: वो आपको मुझे बताना होगा.
4: तो मैं अभी बता दूँ?
3: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
4: संजना.
3: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का.
3: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा.
3: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं.
3: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताऊं.
3: ओके चलिए. हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का. मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है. मैं रेडियो मिर्च पे.
4: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था.
3: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकु. थैंक यू.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें. मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर.
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
12: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे.
13: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा.
14: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा.
11: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all in one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
15: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
16: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
15: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

मेरे मॉम और डैड की जब शादी हुई थी, दे वेंट टू ऊटी फॉर देयर हनीमून. तो मैंने अभी रिसेंटली मम्मा से पूछा कि पापा ने आपसे क्या एमरल्ड लेक पर प्रपोज किया, एंड शी वाज लाइक, कौन सी एमरल्ड लेक, कैसा प्रपोजल, हमारी तो अरेंज मैरिज थी. वेल, इट्स बीन सो मेनी इयर्स और पापा ने अभी तक मेरी मम्मी को ठीक से प्रपोज नहीं किया. आई विल मेक दैट हैपन. लेकिन एमरल्ड लेक के बारे में उन्हें नहीं पता था. आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्योंकि अगर कोई मुझे प्रपोज करे तो इन एन आइडियल सर्कमस्टांस मैं चाहती हूँ कि वो एमरल्ड लेक के पास हो. सो एमरल्ड लेक इज इन ऊटी, जहाँ मम्मी पापा अपने हनीमून के लिए गए थे. और यहाँ से ना, एक तो ये लेक खुद इतनी खूबसूरत है, बट इमेजिन करो कि लेक के एक तरफ बहुत ही खूबसूरत नीलगिरी के पहाड़ हैं, लेक के दूसरी तरफ बहुत ही सुंदर टी प्लांटेशंस हैं, और इस सब के बीच में द काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना जो एमरल्ड लेक के आसपास है, दैट इज अनबिलीवेबल. द ब्यूटी ऑफ दिस लेक इज कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है. तो इमेजिन करो इस शांत सी लेक में, जहाँ एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ टी प्लांटेशंस हैं, यू गो डाउन ऑन योर नीज एंड टेल योर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कि आप सारी जिंदगी, यू कांट वेट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद देम, बिकॉज अगर वो ना होते तो आपकी जिंदगी का कोई मायने नहीं होता. जस्ट थिंकिंग अबाउट इट इज गिविंग मी गूज़बम्प्स. सो इफ यू आर समबडी हु इज गोइंग टू मेक अ प्रपोजल, या फिर यू वॉन्ट टू ट्राई अ सोलो ट्रैवल सिचुएशन इन अ सेफ प्लेस इन इंडिया, जहां पर आप सीनिक ब्यूटी इंजॉय कर सकते हो विदाउट टूरिस्ट ड्राइविंग यू क्रेजी, देन ऊटी इज अ ग्रेट प्लेस, खास करके एमरल्ड लेक. चेक इट अप ऑन गूगल, एंड इफ यू लव इट, ड्रॉप मी अ थैंक यू इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: देखो, यू नो मी, आई नेवर वॉन्टेड टू चीट इन अ रिलेशनशिप, लेकिन क्या करूं, आई गॉट सो ड्रंक इन द पार्टी दैट आई जस्ट एंडेड अप चीटिंग ऑन माय बॉयफ्रेंड. और अब उसे पता चल गया है, व्हाट एम आई सपोज टू डू, ही वांट्स टू हैव अ कॉन्वो दीड्स लाइक हेल्प मी आउट, क्या कपड़े पहनूं, क्या बोलूं उसको, आई एम सो कंफ्यूज्ड. ये मेरी जो जेन जी काफी क्रेजी कजन है, हैज जस्ट मैनेज टू लैंड हरसेल्फ इन अ सूप ओवर द वीकेंड बिकॉज अपने काफी लॉन्ग स्टैंडिंग बॉयफ्रेंड पर उसने ऐसे ही मतलब नशे की हालत में चीट कर दिया है. बॉयफ्रेंड वांट्स टू मीट हर जस्ट टू लाइक आयरन आउट द डिफरेंसेस. आई नो कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत मोहब्बत करता है, तो ही विल नॉट रियली ब्रेक अप और एनीथिंग. एंड उसे भी पता है, यानी कि मेरी कजन को, कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, दैट्स व्हाई वो ज्यादा परेशान नहीं हो रही है. बट क्योंकि उसने मुझसे कलर थेरेपी टिप्स मांगी, मैंने उसे दे दी कि जब आप ऐसी कॉन्फ्रंटेशन कर रहे होते हो जिसमें आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान मान ले ये बात कि आप बहुत ही सच्चे हो, झूठ सारी दुनिया बोल रही है लेकिन आप नहीं, इवन दो दैट्स नॉट द ट्रूथ, आपको ब्लू कलर के कपड़े पहनकर जाने चाहिए टू दिस ब्यूटिफुल महफिल ऑफ लायर्स एंड नॉट लायर्स. बिकॉज जिस इंसान ने ब्लू कपड़े पहने होते हैं, दे कम अक्रॉस एज मोर ट्रस्टवर्दी, एज इफ वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, एज इफ यू कैन रिलाई ऑन एवरीथिंग दैट दे आर सेइंग टू यू. सो व्हाइल माय कजिन मेक्स अ केस फॉर, हाँ हो गया थोड़ा, आई डोंट नो कैसे, मैं थोड़ा ड्रंक थी ना, मुझे याद नहीं था, अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी कोई कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट कॉन्वर्सेशन है, ट्राई वेयरिंग ब्लू फॉर सम हेल्प. And once it works for you, or if you stay alive through that conversation, why don't you hit me up Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ke spelling hai R-O-C-H-I-E. I'll be so happy to talk to you. And while you find me on the gram ya Facebook, kahin mat jana jana.

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्रो फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार, ये
2: आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: थोड़ी ना
3: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर, हमें गुब्बारे वाले से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे। तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है,
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पकड़ा। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर डिटर्जेंट से हम अपनी किस्मत धो सकते होते तो सोचो हर मंडे हम अपनी किस्मत को रीवॉश कर रहे हैं। ऐसे अजीब गरीब सपने मैंने देखे हैं जिंदगी में बहुत चीजों के बारे में। अगर आप भी मेरी तरह एक नंबर के वियर्डो हो, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल गेट टॉकिंग, क्योंकि खूब रमेगा जंग। आई शुड जस्ट नॉट टॉक, जस्ट हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiNMNT से खूब जमेगा रंग, बट वॉट एव। मेरे साथ लाइन पर प्रतीक है। हाय प्रतीक।
2: हेलो रोशी जी,
1: कैसे हो आप प्रतीक जी?
2: बस मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ। दुनिया के कौन से कोने से बात कर रहे हो आप मुझसे?
2: मैं आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
1: कितने साल के थे आप जब पहली बार यू गॉट इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप?
2: नहीं, मेरा ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है
1: अभी तक। नहीं हुआ है?
2: नहीं।
1: तो फिर अब क्या प्लान है उसके बारे में?
2: बस अभी तक कोई मिला नहीं है।
1: आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है?
2: नहीं।
1: और आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है?
2: नहीं, ट्राई तो किया बट कोई पटी नहीं है।
1: कितने साल के हो आप?
2: मैं 24 का।
1: सो आप लाइक ऑफिस में काम करते हो, करेक्ट? कॉलेज वॉलेज तो खत्म हो गया होगा आपका?
2: हाँ सब कम्प्लीट है, मेरा खुद का बिजनेस है।
1: हाँ, तो आपको कॉलेज में भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी आपकी?
2: हाँ नहीं।
1: तो डेटिंग एप्स भी नहीं ट्राई किए आपने?
2: तो कौन सा डेटिंग ऐप बेस्ट है?
1: यार कोई भी डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लो, करना तो सब में सेम ही होता है कि आपको अपनी फोटोग्राफ डालनी होती है, उसमें आपसे आपका प्रोफाइल पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, हाइट क्या है, हॉबीज क्या है।
2: और ट्राई तो किया, तो बहुत है, फेक्स भी बताते हैं उसमें।
1: यार ऑनेस्टली पता है ऐसा होता है कि आप अगर वो बहुत ही ज्यादा देसी वाले डेटिंग ऐप्स यूज करोगे ना, तो उसमें फेक भी होता है और पेड भी होता है। लाइक एक लड़की आपको राइट स्वाइप करेगी, आप उसे मिल भी लेते हो, और उसके बाद जब मिलने वाले होगे तो वो आपको कहेगी कि यार यू हैव टू पे फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी। तो यू हैव टू बी केयरफुल, बट ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं मिलती हैं यार।
2: कौन सा डेटिंग ऐप बेस्ट रहेगा? वो तो वो एक आइडिया होना चाहिए ना।
1: हिंज है, बम्बल है, ओके क्यूपिड है, टिंडर है। आपने कौन से ट्राई किए हैं?
2: बहुत शायद लोकल साइट थी वो शायद।
1: हाँ यार लोकल, उस पे तो तभी तो आपको इतने फेक प्रोफाइल्स मिल रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ हर एक को कि आप लोकल जो डेटिंग ऐप्स हैं दे आर मोर ऑफ अ स्कैम, फंसा देंगे वो डेटिंग ऐप्स आपको। ये जो लेजिटिमेट वाले होते हैं ना, वेरीफाइड डेटिंग ऐप्स, ये वाले यूज करना चाहिए। मैंने तो आपको सिर्फ 4-5 नाम बताए, यू कैन यूज अ होल बंच मोर, बट मेक श्योर दैट यू आर लाइक यू नो वेरीफाइड डेटिंग ऐप्स।
2: ओके।
1: आप कहाँ रहते हो?
2: हाँ मैं विशाखापट्टनम में रहता हूँ।
1: लेकिन आप मतलब किसी कॉलोनी में रहते हो या आपका अपना खुद का घर है सेपरेट, क्या सीन है?
2: मैं सोसाइटी में रहता हूँ।
1: अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो आपकी सोसाइटी में नीचे लाइक पार्क या जिम या स्विमिंग पूल नहीं है?
2: नहीं नहीं, मेरे सोसाइटी में नहीं है।
1: अरे सो सोसाइटी में वॉक के लिए चले जाया करो ना, इतनी सारी लड़कियां बाहर लाइक बास्की खेलने आती
2: है। नहीं तो अभी सोसाइटी में कोई नहीं है, सबकी शादी हो गई, सब जा चुके
1: हैं। Then the only thing I can say प्रतीक is कि आपकी किस्मत काफी खराब है यार। डेटिंग एप्स में आपको कुछ नहीं हो रहा, आपकी सोसाइटी में जितनी लड़कियां सबकी शादी हो गई है, कॉलेज में आपकी लड़की नहीं पटी। आई थिंक आपको रोशिफिकेशन की जरूरत है। कर दूं?
2: हाँ कर दो।
1: ले लो यार।
3: You've been roshified.
1: अब शायद आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए मेरे हीरो।
2: मुझे आपको एक एडवाइस चाहिए थी।
1: बोलो ना।
2: स्कूल टाइम में जब मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, मुझे किसी एक के ऊपर मेरे को क्रश था। एटलीस्ट 20 ईयर्स के बाद मैंने उसके साथ वापस में कांटेक्ट में साथ में उसके आया। तो अभी

0: परेशानी। जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें, वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कई बार लाइफ एक कॉमिक बुक से भी ज्यादा फनी होती है. आई रिमेम्बर बहुत साल पहले मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे बिठाकर एडवाइस दी जिंदगी के बारे में कि बेटा एक काम करना, जिंदगी में हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहना और कभी किसी पर डिपेंड मत करना फाइनेंशियली, ये वो तो ऐसे बॉयफ्रेंड भी होगा जिंदगी में और वो तुम्हें ऐसे फाइनेंशियली अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश भी करे तो मत होना. और मैं मन में सोची कि मम्मी जो मेरा करंट बॉयफ्रेंड है उसे तो मैं पाल रही हूँ, उसके पहले वाला जो था उसको भी हाँ मैं ही पाल रही थी, और उसके जो उसके पहले वाला था वो तो मेरे से ही पैसे लेके अपने घर का रेंट देता था. सो ये लाइफ एडवाइस जो आप मुझे दे रहे हो शायद आपको मेरे करंट और हर एक्स बॉयफ्रेंड को देना चाहिए. दैट ऑब्वियसली सेज अ लॉट अबाउट मी आल्सो, कि मतलब बहुत ही टॉक्सिक पैटर्न था जिससे अब मैं निकल गई हूँ. लेकिन अगर आप ऐसे किसी तरह के टॉक्सिक पैटर्न में हो जहाँ आपको दूसरे इंसान की जरूरत से ज्यादा मदद करनी पड़ती है टू ट्राई एंड जस्टिफाई योर ओन एग्जिस्टेंस इन द रिलेशनशिप, डोंट वरी, आई एम नॉट गोना जज यू. मैं वहां पर थी सो आई नो हाउ इट फील्स. जस्ट हिट मी अप एंड वी विल टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू. फाइंड मी ऑन द ग्राम, ऑन फेसबुक, बट व्हाटएवर यू डू कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मेरी मॉम शायद मुझे दुनिया की बेस्ट लाइफ एडवाइस देती है, बट देर इज समथिंग अबाउट रिलेशनशिप्स जो उन्होंने मुझसे कहा था, जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी. उन्होंने कहा था कि रोशी, दोनों डर और फेथ, दे आस्क यू टू बिलीव इन समथिंग दैट यू कांट सी. अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस पर विश्वास करना चाहती हो, अपने अंदर के डर पर या अपने अंदर के उस हौसले पर, दैट नो मैटर हाउ डिफिकल्ट समथिंग गेट्स, यू विल गेट ऑन दी अदर साइड. और तब से ऑनेस्टली, जब मेरे पास चॉइस होती है ना रिलेशनशिप्स में या प्रोफेशनल लाइफ में या जिंदगी में कभी भी, दैट आई हैव टू चूज बिटवीन फेथ एंड फियर, आई ऑलवेज पिक फेथ, नॉट इन एनीथिंग एल्स बट इन माई ओन हार्ट, इन माई ओन बिलीव. यार कितना ही खराब हो सकता है ना, अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तो अच्छे इंसानों के साथ एट द एंड ऑफ द डे अच्छा ही होता है. लेकिन अगर आपको ये लगता है दैट यू बीन अ गुड पर्सन लेकिन योर रिलेशनशिप्स हैव बिट्रेड यू, देन यू शुडंट फील अलोन अबाउट इट. और अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हो, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरे पास हमेशा आपकी बातें सुनने के लिए हैं नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RocHIE. ढूंढो मुझे अपने

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. La virba la burka.
1: Milci, burka.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिया यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं।
2: लेंस लगाया नहीं
3: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब? नहीं
3: कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
2: क्या सुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
8: Mirchi, fresh maal.
9: High voltage beats aur unstoppable groove ke saath suno Mashuka.

गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: You are in love with your married best friend. और ये secret confession आप किसके साथ make करोगे?
2: The secret box.
1: Obvio, मेरे साथ. मैं हूँ आपकी ब्रोशी, नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपकी सारी ये जो भासा.coms है ना, ये सब सुनने की. और मेरे पास उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. और मेरे साथ लाइन पर अभी है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो नॉरी गर्ल.
3: हेलो रोशी, कैसे हो आप?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ. और जब आपकी कन्फेशन मैंने सुनी थी इंस्टाग्राम पर, मैं तो और भी खुश हो गई, बिकॉज आई वॉज लाइक व्हाट अ कन्फेशन. वो तो मैंने पढ़ी थी, राइट? तो नाउ आई वांट टू हियर योर कन्फेशन इन रियल टाइम. की अच्छा, तो क्या हुआ था आपके साथ?
3: सो रोशी, आई एम क्वाइट शाय, यू नो, मैं थोड़ी शाय टाइप की हूँ. एंड मेरा कन्फेशन काफी वियर्ड है, दैट्स व्हाई लाइक मैं और ज्यादा शाय फील हो रहा है मुझे उसके लिए.
1: अच्छा ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ.
3: ठीक है ठीक है. तो मेरा नया नया बॉयफ्रेंड बना है, एंड तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे एंड लाइक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रहा था. तो मैंने उसको पूछा, डू यू हैव टॉयज?
1: आपने ऐसे ही पूछ लिया, लाइक तेरे पास टॉयज हैं?
3: हाँ, मतलब मैंने ऐसे ही पूछ लिया, तेरे पास टॉयज है क्या? तो ही सेड या आई हैव. तो मैं लाइक थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई, ऑल्दो आई एम शाय, बट मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई. तो मैंने बोला, अच्छा चलो तुम्हारे घर चलते हैं. दिन ऐसे ही तो हम लोग उसके घर गए एंड मैं बैठी हुई थी, तो मैंने उसको

0: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस्य बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: किसी दिग्गज इंसान ने मुझे एक बार कहा था कि जब तुम प्यार करो तो इसलिए प्यार मत करना कि इस इंसान से मैं शादी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं, बट प्यार इसलिए करना क्योंकि तुम्हें सच में उस इंसान से मोहब्बत है। जब हमें किसी से प्यार होता है ना, तब ऑटोमेटिकली वो एंड गेम शादी में बदल ही जाता है। लेकिन जब हम किसी से ये सोच के प्यार करते हैं कि यार ये बंदा सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है, इससे शायद एक साल में शादी कर भी लेंगे, अगर ऐसा हो भी जाए ना, तो आपकी शादी तो ऑसम होगी, आई होप एंड प्रे, लेकिन उसमें प्यार हमेशा बैकसीट लेगा क्योंकि आपने वो रिलेशनशिप कभी प्यार के लिए शुरू ही नहीं किया था। मुझे याद नहीं आ रहा मुझे किसने ये एडवाइस दी थी यार, बट जिसने भी दी थी ना ये एडवाइस, मैं जिंदगी में एडवाइस कभी नहीं भूलूंगी, देने वाले का नाम ऑलरेडी भूल चुकी हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या हमें प्यार सिर्फ प्यार के लिए करना चाहिए या इन 2022 प्यार की आगे भी और चीज़ें होती है जिसके बारे में सोचना चाहिए बिफोर वी गेट इन टू अ रिलेशनशिप? आप इसके बारे में जो भी सोचते हो ना, डोंट फॉरगेट टू टेल मी ऑल अबाउट इट इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड ऑनेस्टली जिसके पास लव है उसके पास सब है, एंड आई

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: एक बात बताइए, अगर कल सुबह बॉलीवुड उठकर अपनी याददाश्त खो दे तो उसे अपने बारे में सबसे पहले क्या याद आएगा? धुरंधर, एआर रहमान, या फिर वो गाने जो सालों बाद भी बिना परमिशन के दिमाग में घुस जाते हैं? मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर कभी स्टार्स थे ही नहीं, इट वॉज ऑलवेज मेमोरी। और इस हफ्ते भी कहानी कुछ वैसी ही है। कुछ लोग पुरानी यादों को फिर से बेचने निकले हैं, कुछ लोग नई यादें बना रहे हैं, कुछ लोग नोस्टैल्जिया पे जी रहे हैं एंड कुछ लोग फ्यूचर लिख रहे हैं। और हम इन दोनों के बीच खड़े हैं, पास्ट और फ्यूचर के बीच, मेमोरी और मैडनेस के बीच। Hi, it's me, Suren, and this is India's most definitive Hindi music countdown, the Mirchi Top 20. And aaj ke episode ki shuruaat kar raha hoon with a Rehman song from Main Wapas Aaunga, which is a decent soundtrack, lekin ye rockstar ya highway ke level ki nahi hai. Ye baat I am completely sure of. The songs haven't connected the same way, but here is a nice song, Mascara, jise gaya hai Nilanjana Ghosh Dastidar ne, and it is on number 20.
4: Number 20. Isme se yara lai mascara.

कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया की हर बड़ी चीज थोड़ी सी दीवानगी के साथ ही शुरू होती है। एक ऐसा सपना जिसे देखने की हिम्मत सब में नहीं होती। पच्चीस साल पहले एक फिल्म आई थी, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा। पहले उसकी याद के बारे में बात करूंगा। मिट्टी उड़ रही थी, धूप सर पर थी, लोग पसीने में भीगे हुए थे और एक पूरा गांव अपनी सांसें रोक कर खड़ा था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये उम्मीद थी, ये जिद थी, ये वो एहसास था कि कभी कभी जिंदगी में एक ही मौका मिलता है और उसी एक मौके पर सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आज भी जब उस फिल्म के सीन्स हमें याद आते हैं तो स्कोर याद आता है, वो ढोल याद आता है, भुवन याद आता है, गौरी याद आती है और सबसे ज्यादा वो फीलिंग याद आती है कि हम किसी फिल्म को नहीं देख रहे थे, हम उस गांव के साथ जी रहे थे। और फिर सोचिए क्या आइडिया था, गांव के लोग, अंग्रेज, 3 घंटे से लंबी ये फिल्म और क्लाइमैक्स में एक क्रिकेट मैच। आज भी ये पिच सुनकर प्रोड्यूसर्स डर जाते हैं, लेकिन आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने उस वक्त डर और कॉमन सेंस दोनों को साइड रख दिया और बना दी लगान। मुझे लगता है लगान की सबसे बड़ी जीत ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने बॉलीवुड को बताया कि अगर कहानी में जान हो तो ऑडियंस किसी भी सफर पर आपके साथ चलने को तैयार हो जाती है। 25 साल बाद भी हम उस फिल्म को याद करते हैं, उसके डायलॉग्स के लिए नहीं, उसकी बॉक्स ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास के लिए। और आज भी सवाल वही है, अगली लगान कौन बनाएगा? This epic film is re-releasing, so watch it अगर आपको वक्त मिले। BilalMirchi.20 पर फहीम अब्दुल्ला की आवाज में one of my favorite tracks on the show, this is चांद मेरा दिल on number 18.

0: प्रवीण के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: मिर्ची
2: नवीद
1: बोल रहा हूँ।
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू के लिए क्या करना पड़ेगा
1: वो आपको मुझे बताना होगा।
2: तो मैं अभी बता दूँ
1: एक सेकेंड ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
2: संजना।
1: संजना किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का।
1: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
1: अच्छा संजना मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क भी जाते हैं।
1: अरे बाप रे। तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में। थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूं।
1: ओके चलिए।
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
2: गॉड। मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
1: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कहते एक बार कुकड़ुकू। थैंक यू।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
0: एक ही होता है।
4: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17।

0: वेलकम टू द जंगल, पूरी इंडस्ट्री दिख जाएगी भाई आपको इस फिल्म में। एंड टॉकिंग ऑफ दिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एके बॉलीवुड, कभी कभी किसी एक फिल्म की कामयाबी पूरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बदल देती है परमानेंटली। धुरंधर के बाद मुझे लगता है कि इंडियन स्पाई जॉनर उसी फेज में है। अब सिर्फ एक्सप्लोजन्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्लो मोशन वॉक्स काफी नहीं है, अब सिर्फ स्टाइलिश फ्रेम्स काफी नहीं है। ऑडियंस को खतरा महसूस होना चाहिए, वो दाव पेच महसूस होने चाहिए, और शायद इसलिए यशराज की फिल्म अल्फा का टीजर उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया जितनी उम्मीद की थी। इट्स गॉट आलिया भट्ट, इट्स गॉट बॉबी देओल, एंड इट इज गॉट शर्वरी। इट्स पार्ट ऑफ द YRFY यूनिवर्स। कागज पर तो सब कुछ सही लगता है, लेकिन टीजर देखने के बाद मुझे एक ही चीज महसूस हुई, सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत पॉलिश्ड है, बहुत कैलकुलेटेड है, और स्पाई फिल्म्स कैलकुलेशन से नहीं केओस से याद रहती हैं। धुरंधर देखकर लगा था कि यार कुछ भी हो सकता है इस फिल्म में, अल्फा देखकर लगता है सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। और वैसे एक और सवाल है, फिल्म में शर्वरी भी है लेकिन टीजर देखकर तो ऐसा लगा जैसे उनका पासपोर्ट ही कहीं खो गया है। देखते हैं फिल्म क्या करती है, बिकॉज टीजर तो बस पहली झलक होती है। फिलहाल शर्वरी की जब बात चली ही है तो चलिए उनकी दूसरी फिल्म की तरफ। मैं वापस आऊंगा, एआर रहमान जब नॉस्टैल्जिया को छू लेते हैं ना तो वो उसे म्यूजियम पीस नहीं बनाते, उसमें नई जान फूंक देते हैं। इश्क मस्ताना में 1940s के बिग बैंड जैज का रंग है, पंजाबी फोक की मिट्टी है, और मोहित चौहान की आवाज में वो खनक है जो सीधा हिट करती है। इट्स डेब्यूइंग ऑन नंबर 16, दिस इज इश्क मस्ताना by A.R. Rahman and Irshad Kamil.
1: Number 16.

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
4: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: ये गाना खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होता। आप सोचते हो एक और बार सुनूंगा और फिर खुद को चौथी पांचवी बार प्ले करते हुए पकड़ लेते हो। और मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इसका सिंगर राघव चैतन्य, क्योंकि कुछ सिंगर्स सुर में गाते हैं, कुछ सिंगर्स पर्सनालिटी में गाते हैं और राघव दूसरी कैटेगरी में आता है। सारी परतें हटा के सुनो, सिर्फ राघव की आवाज सुनो।
1: पड़े अगर तेरे लिए मर भी जाना, उफ नहीं कर दीवाना। मामा माशूका, ओ माय माशूका।
0: देखे कैसे वॉइस को यूज कर रहा है ये लड़का, कभी ब्रीजी है, कभी फ्लर्टेशियस है, कभी ऑलमोस्ट कॉन्वर्सेशनल है, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। गाना सिर्फ गा नहीं रहा, परफॉर्म कर रहा है और शायद इसलिए प्रीतम दा बार बार उसकी तरफ लौट रहे हैं। इन एनिमल, इन मेट्रो, इन दिनों, इन कॉकटेल। इनफैक्ट राघव ने तो कई बार प्रीतम दा के गाने कवर भी किए अपने वीडियोस में।

0: dude, it sounds so lovely. Pattern साफ नजर आ रहा है. मिर्ची टॉप 20 पर नंबर 3 पर है तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला, जो कोविड के बाद अक्षय कुमार की सबसे कामयाब फिल्म है. लेकिन हम राघव चैतन्य की इस ट्रेन से उतरने नहीं वाले, क्योंकि माशूका से पहले एक और गाना था जिसने सबको पूछने पर मजबूर कर दिया, यार ये सिंगर कौन है. माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम एक विलन रिटर्न्स. दिल इश्क तो है बट साथ में दर्द भी.
1: पिक ऑफ द वीक.

0: Hardy Sandhu and Kiran Bajwa have got a hit song to their credit. Wow! And अब जब है जवानी तो इश्क होना है थिएटर्स में एक हफ्ता बिता चुकी है तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसका म्यूजिक, क्योंकि उस एल्बम में दो गाने ऐसे हैं जो पहले से ही सुपर हिट्स बन चुके थे, चुनरी चुनरी एंड देन इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो बीवी नंबर वन में था, इश्क चांदी है इश्क सोना है सोना बाबा सोना सोना सोना। वेल, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का म्यूजिक एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। आज के कंपोजर्स को शायद लगता है कि लिसनर 3 सेकंड में शायद बोर हो जाएगा, इसलिए हर दूसरे सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा होता है गाने में, नई बीट, नया ड्रॉप, नया इफेक्ट, नई लेयर, और फिर गाना खत्म होने के बाद आपको गाना याद ही नहीं रहता। आप जरा ओरिजिनल वाला इश्क सोना है सुनिए।
1: इश्क

यार क्या था इस गाने में? कुछ खास नहीं, और शायद वही इसकी खासियत है। मेलोडी को सांस लेने की जगह मिली, हुक को बैठने की जगह मिली। गाना आपका अटेंशन डिमांड नहीं कर रहा था, गाना आपको साथ ले जा रहा था। हर गाना लाउड होकर याद नहीं रहता, कुछ गाने चुप रहकर भी याद हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त बॉलीवुड में एक गाना इतना लाउड है कि उसके सामने सब पीके पड़ रहे हैं। 17 हफ्ते एट द नंबर वन पोजीशन इज नो जोक एंड आई स्टिल फाइंड इट अनबिलीवेबल। और अब तो ओटीटी पर भी हुड़दंग मचा रखा है, मैडनेस नजर आ रही है। दिस इज शरारत बाय मधुवंती बागची, जैस्मिन सैंडलास फ्रॉम धुरंधर, नंबर वन।

और बस इसी के साथ एक और एपिसोड, एक और काउंटडाउन और बॉलीवुड की एक और कहानी खत्म होती है। कुछ गाने इस हफ्ते चार्ट्स पर चढ़े, कुछ हिट कर गए और कुछ ने हमें याद दिलाया कि अच्छा म्यूजिक कभी पुराना नहीं होता। बट टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, अपनी प्लेलिस्ट को जिंदा रखिएगा और अपनी यादों को भी। दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची का
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: out of 10
1: क्यों नहीं चाहिए चल
0: ओके देन भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ली तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी

पुरानी जीन्स पर आज हम एक बहुत ही स्पेशल म्यूजिक कंपोजर सिंगर की बात करने वाले हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये जो सिंगर है ना, इनकी आवाज में इतनी मासूमियत है कि उस आवाज के ना इसे गाल पकड़ के प्यार से वुगली वुगली ऊश करने का दिल करता है। उस आवाज में इतनी रूहानियत है कि जब सुनते हैं तो कानों से होते हुए रूह में उतर जाती है। ये आवाज है हेमंता मुखोपाध्याय की, या हेमंत मुखर्जी की, या हेमंत कुमार की, या प्यार से जैसे कहते हैं हेमंत दा की आवाज आपके दिल और जज्बात के ऐसे तार छेड़ जाती है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब ये गाना जो हम सुनने वाले हैं ना, इसे सुन के उस इंसान को भी अनरिक्वाइटेड या अधूरे प्यार का दर्द महसूस हो जाए जिसे किसी से प्यार ही नहीं है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, हेमंत दा के बारे में और करेंगे बात राइट हियर मिर्ची पर।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: हेलो
2: हेलो सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
1: क्या हो गया
2: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
1: क्या हुआ क्या है
2: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
1: कब दिया था आपने?
2: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
1: क्या प्रॉब्लम क्या है?
2: चंद्र फोन लेके आ,
1: डिस्प्ले आ रहा है।
2: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार?
1: फोन आ रहे हैं और ओके।
2: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
1: बेल बज रही है।
2: अरे बेल वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार? ये
1: अरे आपने लिया कहाँ से था?
2: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
1: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
2: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
1: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
2: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
1: तो
2: नहीं होते,
1: थोड़ी ना
2: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
1: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
2: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
1: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे?
2: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
1: फोन थोड़ी ना होते
2: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
1: फोन मत करिए,
2: यहाँ फोन मत करिए यार।
3: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
1: हेलो
3: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
1: अरे सर काम का टाइम है, आप फालतू
3: हैं। आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
1: कुकड़ू कु।
3: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
5: ये माना मेरी जान।

मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और आज हो रही है द लेजेंड हेमंत कुमार की बात। हेमंत दा का जन्म 16 जून 1920 को बनारस में हुआ था। अब तब तो बनारस ही बोलते थे ना। ये उनके नाना नानी का घर था। उनके पापा दादा तो बंगाल के थे। बंगाल में ही उनकी स्कूल की पढ़ाई हुई। लेकिन हेमंत दा जब कॉलेज पहुँचे तब उन्होंने क्या किया, करते हैं ना बात थोड़ी देर के बाद। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: अच्छा आज का आसन है यस बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो ऊपर नीचे। वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Purani Jeans with Charu, only on

0: तो हेमंत दा ने स्कूल की पढ़ाई तो कर ली, उसके बाद इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए उन्होंने जादवपुर में बंगाल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे अब जादवपुर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वो ज्वाइन की। लेकिन जैसे ही ये कॉलेज की पढ़ाई जोर पकड़ने लगी, हेमंत दा की तबीयत खराब होने लगी। फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी थे, लेकिन तन की तबीयत से ज्यादा मन की तबीयत खराब हो रही थी, क्योंकि मन तो म्यूजिक में लगा था ना। 17-18 साल के रहे होंगे हेमंत दा, उन्होंने मन बना लिया कि करियर तो म्यूजिक में ही बनाऊंगा। उनके फादर इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन लड़का तो हाथ से निकल गया था, क्योंकि उसे संगीत की ऊंचाइयों तक जो पहुंचना था। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं आज हेमंत कुमार स्पेशल मिर्ची पर।
1: जरा नजरों से कह दो जी।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

द लेजेंड कॉल्ड हेमंत कुमार, मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। हेमंत दा ने म्यूजिक की ट्रेनिंग ली बंगाली म्यूजिशियन शैलेश दत्त गुप्ता से और क्लासिकल म्यूजिक सीखा उस्ताद फैयाज अली खान से। भाई हेमंत दा का पढ़ाई लिखाई में खास दिल नहीं लगता था स्कूल में, क्योंकि उनका दिल तो संगीत में लगा हुआ था ना। स्कूल में ही उनके आर्ट से जुड़े दो लाइफ टाइम दोस्त बन गए थे, सुभाष मुखोपाध्याय जो आगे चलकर एक बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएट बने और संतोष कुमार घोष जो आगे चलकर एक बहुत ही जाने माने राइटर बने। सुभाष मुखोपाध्याय के कनेक्शंस की वजह से हेमंत दा को 13 साल की उम्र में, व्हेन ही वाज जस्ट 13, इमेजिन, उनका पहला सिंगिंग ब्रेक मिला ऑल इंडिया रेडियो में गाने के लिए। ये सफर आगे कहाँ बढ़ा करते हैं ना बात थोड़ी देर के बाद। फिलहाल हेमंत दा का कंपोज किया हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं साहब बीवी गुलाम मूवी से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

बातें हो रही हैं आज उस म्यूजिक कंपोजर, उस सिंगर की जिनकी आवाज को वॉइस ऑफ गॉड भी कहा गया है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, द लेजेंड हेमंत कुमार। हेमंत दा की फिल्मी म्यूजिक जर्नी की शुरुआत हुई थी 1940 में, जब उन्होंने एक बंगाली फिल्म के लिए अपना पहला गाना गाया था। द कंपोजर वॉज अगेन अ लेजेंड एसटी बर्मन साहब। और ये प्रोफेशनल लाइफ तो शुरू हो ही गई थी, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी सेट होने की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि इसी दौरान वो अपनी फ्यूचर वाइफ बेला मुखर्जी से मिले। बेला जी भी एक सिंगर थी, इनफैक्ट काफी गानों में हेमंत दा ने बेला जी को मेंटर भी किया। 1945 में दोनों की शादी हुई, उन्होंने एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी स्टार्ट की जिसका नाम था हेमंत बेला प्रोडक्शंस, बाद में जिसका नाम बदल के गीतांजलि प्रोडक्शंस रख दिया गया था। इनके दो बच्चे थे, बेटी रानू और बेटे जयंत, जिनकी शादी बाद में एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी से हुई। अच्छा, बैक टू मिड 40s, तो इस सफर में हम सफर तो हेमंत दा को अब मिल गया था, लेकिन आगे अभी उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी ऊंचाई पर पहुंचना था। करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: हेलो, दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
1: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन था, उसकी शादी के फोटो बकवा दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोज उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
2: नहीं
1: दीदी, मैं कल को
2: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
1: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: अरे
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
2: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है,
2: कहाँ होता है बताइए।
0: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
4: ओनली ऑन 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। इट्स हॉट।
0: पुरानी जींस चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

हमारे देश की बहुत बड़ी त्रासदियों में से एक है अर्ली और मिड 40s का बंगाल का अकाल। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस त्रासदी में बंगाल के लाखों लोग भुखमरी, गरीबी, लाचारी, बीमारियों का शिकार हुए। तब बंगाल की एक संस्था IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए भी काम करती थी और लोगों के हित के लिए भी, उसके दो मेंबर्स ने इस त्रासदी से आहत होकर एक गाना बनाया। ये गाना उन सारे बंगाली गानों से अलग था जो अब तक बंगाल में बनते आए थे। एक खुशहाल गांव को कैसे इस अकाल, इस गरीबी ने बर्बाद कर दिया, ये उस गाने में बहुत संवेदनशीलता के साथ बताया गया। ये गाना बनाया था एक लेजेंड कंपोजर सलिल चौधरी ने और गाया था एक और लेजेंड कंपोजर सिंगर हेमंत कुमार ने। इस गाने ने लोगों के दिल को इतना छुआ कि हेमंत कुमार सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे देश में पॉपुलर हो गए। ये हुआ था 1947 में। तब हेमंत दा बंगाली फिल्मों के गाने तो गा ही रहे थे। इसके बाद वो मुंबई कैसे आए, करते हैं बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: परेशानी। जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें। वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

द लेजेंड हेमंत कुमार की जर्नी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो लेट 40s तक हेमंत दा बंगाल में इमेंसली पॉपुलर हो गए थे। इसी दौरान वो डायरेक्टर हेमंत गुप्ता से मिले, जो 1950 के आसपास मुंबई शिफ्ट हो गए। और जब उन्होंने अपनी फिल्म आनंद मठ बनाने की सोची, तो उसका म्यूजिक कम्पोज करने के लिए हेमंत दा को बुलाया। और 1951 में हेमंत दा भी मुंबई शिफ्ट हो गए। और इस फिल्म का बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ वंदे मातरम, जो लता मंगेशकर जी की आवाज में हेमंत दा ने कंपोज किया था, इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वर्जन्स ऑफ दैट पेट्रियोटिक सॉन्ग। और देशभक्ति के गानों की बात करें तो

फिर 1954 में जागृति फिल्म के गाने भी हेमंत दा ने कंपोज किए, जो आज भी हर इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे चलते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या फिर हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इन फिल्मों के साथ एक और फिल्म और उसका आइकॉनिक म्यूजिक था, और उसी के साथ साथ हेमंत दा के गाए हुए गाने भी, जिसने हेमंत दा को हिंदी फिल्मों में भी एक बहुत बड़ा नाम बना दिया। करते हैं उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और मिर्ची।

द लेजेंड हेमंत कुमार, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो हेमंत दा 1951 में बॉम्बे शिफ्ट हो गए। 1952 में एज म्यूजिक कंपोजर उनकी पहली हिंदी फिल्म आई आनंद मठ, जिसका म्यूजिक इतना ज्यादा नहीं चला। इसके बाद इन्होंने एक दो फिल्मों का म्यूजिक और दिया, वो भी कुछ खास नहीं चला। तब हेमंत दा को लगा कि चलो वापस कलकत्ता चलते हैं, और तब उनको रोका फिल्मिस्तान स्टूडियो, जो तब एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी, उसके वन ऑफ द फाउंडर्स एस मुखर्जी ने। ये एस मुखर्जी वही थे जिन्होंने हेमंत दा को सजेस्ट किया था कि वो हिंदी फिल्मों के लिए अपना नाम हेमंत कुमार रख लें। तो मुखर्जी साहब ने उनको बोला कि भाई ऐसे मत जाओ, एक हिट तो देकर जाओ। और इसके बाद जो इन्होंने म्यूजिक दिया है उसे हिंदी फिल्मों का आइकॉनिक म्यूजिक माना जाता है। इसके म्यूजिक के लिए हेमंत दा को फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड मिला था। ये म्यूजिक था नागिन फिल्म का म्यूजिक, जिसमें वो क्लासिक बीन वाली ट्यून थी। और आपको पता है इसमें हेमंत दा ने साउंड के लिए बीन का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने ये साउंड हारमोनियम और क्लेवायलिन नाम के एक इंस्ट्रूमेंट की साउंड को मिला के बनाया था। आज भी जहां भी ये म्यूजिक चलता है सबके मन डोल जाते हैं, तन डोल जाते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: हेमंत दा कमाल के सिंगर थे और उससे भी ज्यादा कमाल के म्यूजिक कंपोजर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और उनकी ना एक और स्पेशलिटी थी कि वो टेक्निकली बहुत साउंड थे, मतलब उस टाइम पे 50s 60s में जब म्यूजिक में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब हेमंत दा को पता रहता था कि किस गाने के लिए माइक कितना दूर रखना है या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज करना है। जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि नागिन फिल्म के मन डोले मेरा तन डोले में वो जो आइकॉनिक बीन की ट्यून है, उसमें एक्चुअली उन्होंने बीन का इस्तेमाल नहीं किया है, हारमोनियम और क्लेवालन नाम के इंस्ट्रूमेंट की साउंड को मिक्स करके वो बीन की साउंड बनाई गई है। एंड उसके बाद यू नो फिल्म्स लाइक 20 साल बाद, साहेब बीबी और गुलाम, अनुपमा एंड खामोशी, खामोशी का म्यूजिक उफ तौबा। खास करके जो गाना हम सुनेंगे इसमें नाव से टकराती पानी की लहरों की आवाज, जिस तरह से कोरस का इस्तेमाल किया गया है, या बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर के म्यूजिक की जो छाप इनके म्यूजिक में सुनने को मिलती है, दैट इज सो ब्यूटिफुल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।
1: Oh, Sean.

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची। बोल रहा हूँ,
1: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: वो आपको मुझे बताना होगा।
1: तो मैं अभी बता दूँ?
0: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
1: संजना।
0: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
1: अपने हस्बैंड का।
0: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
1: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
0: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
1: भड़क भी जाते हैं।
0: अरे बाप रे, तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
1: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
0: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
1: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूं।
0: ओके चलिए।
2: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
1: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
2: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी। अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
0: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
1: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
0: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कहते एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ए पटाक,
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ना कैदी तो कैदी, नहीं चाहिए तुम्हारा अवार्ड, पहले क्यों नहीं दिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर मैं जब ऐसा बोल रही हूँ तो शायद थोड़ा एटीट्यूड साउंड कर रहा होगा, लेकिन हेमंत दा ने जब ऐसा किया था तो वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। जी मैं बात कर रही हूँ द लेजेंड कंपोजर सिंगर हेमंत कुमार की। उनको उनके गानों के लिए, म्यूजिक के लिए बहुत अवार्ड्स मिले। इनफैक्ट 1970 में और 1986 में उनको दो बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिल चुका है। लेकिन 1971 में पद्मश्री और 1987 में पद्म भूषण जैसे सम्मान लेने से हेमंत कुमार ने मना कर दिया। हेमंत दा को ऐसा लगा कि ये सम्मान उनको बहुत देरी से मिला, इतने साल उनके काम को नजरअंदाज किया गया, उनके जूनियर्स, उनके कंटेम्प्रेरीज को बहुत पहले ये सम्मान मिल चुका था, तो बस सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आ गई, सम्मान लेने से मना कर दिया। पर आई थिंक सबसे बड़ा सम्मान जो उनके काम को मिला है और आज तक मिल रहा है वो ये कि जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन लोग उनका म्यूजिक, उनके गाने इतने पसंद करते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

0: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस्य बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
7: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: एक लेजेंड ने दूसरे लेजेंड के बारे में क्या कहा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लता मंगेशकर जी हेमंत कुमार जी के बारे में ऐसा कहती थी कि हेमंत कुमार जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई संत साधु है और अपनी भक्ति के गीत गा रहा है, इतने डिवोशन के साथ। एक बहुत पुराने इंटरव्यू में सुनिए लता जी ने हेमंत दा के म्यूजिक कॉम्पोजिशन के बारे में क्या शेयर किया था।
1: हेमंत दा इसमें विश्वास करते थे कि सिंपल ट्यून हो, बोल अच्छे हो, और जब गाना रिकॉर्ड होता था तो उनके म्यूजिक में भी एक बड़ा सिंपल ये रहता था, बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा या इसमें वो विश्वास नहीं करते थे, और खुद गाते थे अच्छा। तो जो खुद गाता है वो जब गाना बनाता है तो उसका एक अलग ही रंग हो जाता है,
0: और ऐसे रंग जो पता नहीं कितने सालों से दुनिया को रंगीन बना रहे हैं। इन दिग्गजों का कोई भी पुराना गाना आप उठा के सुन लो, क्या ही कमाल होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्च।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, ओनली ऑन 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अभी कल परसों ना मैं YouTube पे गाना देख रही थी, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और देखते देखते मैंने उसके कमेंट्स पढ़ रही थी, और वो कमेंट्स में वो जेनरेशन भी थी जो उस टाइम टीनेजर थी जब वो गाना रिलीज हुआ था, और वो जेनरेशन भी थी जो आज टीनेजर है। वो गाना था 1957 की प्यासा का, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा तो कमाल है ही, SD बर्मन जी की क्या ही कॉम्पोजिशन है, और जो गाया है हेमंत दा ने। म्यूजिक कंपोजर सलिल चौधरी यूं ही नहीं कहते थे कि हेमंत दा की आवाज इज वॉइस ऑफ गॉड, ऊपर वाले की आवाज है वो। आप उनकी आवाज जब सुनते हैं ना, एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो चलते हैं अलग ही दुनिया में, ये गाना सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, वापस जल्दी होती है मुलाकात, सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la. ¡Rámbala! ¡Murga, murga! ¡La virba la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: ¡Aló!
3: ¡Aló! सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्रो फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख, ये क्या है यार, ये
2: आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक
2: तो
3: नहीं होते,
2: थोड़ी ना
3: तो मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते, कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराएंगे,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे, तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: अब गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है,
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हाँ हाँ बच्चा, आज का आसन है यस बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद हट ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हट 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची, इट्स
1: ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिया यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से एल्बम। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं।
1: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गायब
1: नहीं। मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: अरे
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम। ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आएं, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: की प्यास है।
1: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: आर के जूल्स
1: मंगल आरती,
0: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स,
2: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
0: सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर,
2: ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: चलिए जानते हैं खाने का हमारे मन पर कितना गहरा असर पड़ता है।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आपकी डाइट सिर्फ फ्रूट्स हैं?
3: नहीं, हम लोग सब कुछ खाते हैं, पर डेफिनेटली खाते समय कई चीजों का ध्यान भी देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन।
2: जैसा अन्न वैसा मन, जो खा रहे हैं मन में वैसा ही होता है, विचार वैसे पैदा होते हैं।
3: से एक्चुअली होना चाहिए जैसा अन्न वैसा तन।
2: हाँ, क्योंकि जो खा रहे हैं उस हिसाब से हमारी बॉडी बनती है।
3: मतलब एज यू ईट सो शैल बी योर बॉडी, पर ये नहीं बोलते हैं जो आपका खाना है सो शैल बी योर माइंड, वो माइंड पर इम्पैक्ट करता है। नाउ दिस इज अ लॉट ऑफ विजडम जो पीछे से चला आता है, बट अभी हम उसके प्रति थोड़े से हम उसको ईजी ले लेते हैं। जो हम खाते हैं वो तो डेफिनेटली तन को ही लगता है, बॉडी को ही लगता है, लेकिन जिस कॉन्शियसनेस में वो बनाया जाता है उसका इम्पैक्ट मन पर पड़ता है।
2: तो अगर मैं गुस्से में खाना पका रहा हूँ तो उसका इम्पैक्ट खाने वाले पे भी पड़ेगा?
3: यस।
2: ओह,
3: अगर कोई गुस्से में खाना बनाता है तो खाने वाले को भी थोड़े समय के बाद अचानक इरिटेशन एक्सपीरियंस होनी शुरू हो जाएंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, आप देखो, अगर आप कई बार देखिए, एक मंदिर में हम कुछ खाते हैं, प्रसाद हमें मिलता है, घर में हम वही खाना बनाकर खाते हैं, समझो वही शीरा हमने मंदिर में लिया, वही हमने घर में खाया और वही हमने होटल में खरीदा। सब में कोई फर्क होता है कि सेम होता है?
2: फर्क होता है, क्योंकि भावनाएं अलग होती हैं।
3: तो माना आपको खाने से वो भावनाएं पहुंच रही है। हो सकता है ज्यादा टेस्टी एक बार होटल का हो, पर सबसे ऊंची भावना किसमें होती?
2: जो मंदिर मस्जिद दरगाह पे मिली हो,
3: इसलिए वो थोड़ा सा भी होता है, लेकिन आप कहेंगे नहीं, ये सबके साथ मुझे बांट करके खाना है।
2: बिल्कुल, हाँ।
3: थोड़ा भी होगा लेकिन आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस होता है वो हो, सबको देना है, बीमार को भी देना है। इसके अंदर बहुत हाई एनर्जी, आपको ऐसा लगता नहीं ये मैं घर ले जाऊं, अमृत घर ले जाऊं। क्यों? क्योंकि मंदिर में जब किसी ने खाना बनाया होता है तो वो कहता है ये खाना बनेगा, पहले तो उसकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई होती
2: है, बनाई
3: उसने। वो ज्यादा बोलेंगे भी नहीं, वो चुप रहेंगे, वो भगवान की याद में, वो फूल की माला भी बना रहे होंगे ना मंदिर में, तो वो सोचते नहीं मुझे ये भगवान की याद में बनाना है तो ही ये जमा होगा। इतना केयरफुल वो होते हैं उस चीज के लिए, कहीं लंगर बनता है, कहीं बनता है।
2: हाँ,
3: खाना बहुत सिंपल होगा, लेकिन वो इस कॉन्शियसनेस में बनाया जाता है कि ये पहले तो खाना बनेगा, भगवान को इसका भोग लगेगा और फिर सबको ये प्रसाद के रूप में बटेगा। तो वो कॉन्शियसनेस क्योंकि बहुत हाई होती है तो खाने की एनर्जी भी बहुत हाई होती है, इससे वो थोड़ा सा भी प्रसाद जो है वो आपके मन को बहुत एलिवेट करेगा, सुकून देगा। ऐसे ही घर में भी जो खाना बनता है वो भी माँ जब बनाती है तो वो एक इंग्रेडिएंट और डालती है जो हमें पता नहीं चलता,
2: इंग्रेडिएंट पी, प्यार।
3: जी, इसलिए हर एक कोई कहता है घर का खाना, घर का खाना। वो घर का खाना क्यों? क्योंकि वो सिर्फ खाना नहीं था, हर एक की जो बेस्ट कुक है वो मम्मी होंगे।
2: बिल्कुल।
3: विदेश में जा रहे होंगे लेकिन लड्डू का डब्बा घर से लेकर के जा रहे होंगे।
2: बिल्कुल।
3: बेसिकली वो खाना नहीं लेकर के जा रहे होते, वो इमोशन को लेकर के जा रहे हो। इसलिए जब हम घर में खाना खाते थे ना, जब हमारी मदर्स कुक करती हैं, हम सिर्फ खाना नहीं खाते, वो इमोशनल स्ट्रेंथ का काम करता है। हम उस खाने में प्यार भी खाते हैं, शक्ति भी खाते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत सटल रूप से वो बच्चे को एम्पावर करता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या खाना हमें वही खाना चाहिए जो अच्छे इरादे से बनाया जाता है? हम बताते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो खाना बनता है कि उसको पसंद आए और वो बार बार आए।
4: वो पसंद आए और वो बार बार आए, ये इंटेंट किसका होता है?
3: ओनर का।
4: और बाकी सब जो वहाँ पर कर रहे हैं काम,
3: वो हाँ वो एम्प्लॉयज हैं।
4: हाँ जी,
3: वो कि यार जल्दी जाए।
4: तो जरूरी नहीं है कि सबका इंटेंट वही है, ज्यादातर इंटेंट वहाँ पर ओनर भी, ये कब सटनली हो जाता है पता नहीं चलता, प्रॉफिट का एक मोटिव आने लगता है। अगर आप बार बार वही खाना खाते हैं, बार बार हम वो खाना खाते हैं जिसके अंदर इंटेंशन धन कमाने की है, सटनली ये होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, आपको पता नहीं चलेगा, तो आपका मन रिश्तों से पहले धन के पीछे भागेगा। अगर आप रोज घर में मम्मी के हाथ का खाना खाते हैं, उनकी भावना कौन सी थी? प्यार,
3: प्यार।
4: वो बॉन्डिंग बनती जा रही है, पता नहीं चलेगा, लेकिन उस बॉन्डिंग के कारण कभी भी कुछ होगा तो आपकी प्रायोरिटी हमेशा रिश्ता होगी। लेकिन वहीं पर अगर आप रोज बाहर का खाना खा रहे हैं जिसके अंदर इंटेंशन भावना ही प्रॉफिट की है, आपकी प्रायोरिटी कब रिश्ते से पहले धन हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा।
3: बाहर का भी खाना खाने जाना ही नहीं चाहिए।
4: एक्चुअली तो ये एक इतना स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमें घर में ही खाना चाहिए, और जो घर में बनाने वाला है उसको बहुत हायर कॉन्शियसनेस में भगवान की याद में ही बनाना चाहिए। हाँ। और इसलिए जो खाना बनाता है ना उसको कभी डांटना नहीं चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या जब मन शुद्ध होता है तभी जिंदगी में सफलता आती है? अब जानिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। एक ये होता है ना कि यार मैं अलग अलग प्रांतों के खाना जाके टेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या बनता है, किस तरह का खाना होता है, खान पान क्या है, तो लखनऊ की बिरयानी खाऊंगा और केरला के मैं मलाबार पराठे खाना चाहता हूँ, कश्मीर में जाके कुछ और खाना है। मतलब भारत में ही इतना कुछ है, बाहर की तो बात रहने दीजिए, तो वो कब होगा अगर मैं बाहर खाना ही नहीं खाऊंगा? तो
1: खाना पहले न्यूट्रिशन हुआ करता था, आज एंटरटेनमेंट हो गया है। पहले खाना हम न्यूट्रिशन के लिए खाते थे, अभी ये भी एक ऐसा हो गया है कि ये खाना है, ये करना है, ठीक है, लेकिन हर चीज के पीछे एक विजडम होता है। पहले आप देखें जो पुराने लोग होते थे, वो जब घर से निकलते थे तो साथ में अपने खाने का डब्बा,
2: बिल्कुल साथ में पैक करके लेते थे,
1: खाना का डब्बा भी लेकर जाते थे और पानी भी आप देखें तो साथ में लेकर जाते थे।
2: जब हमारे दादाजी और दादी जी निकलते थे असम से, वो आते थे लेट्स से बॉम्बे तक, बीच में नागपुर वगैरह, हमारी दीदी को बोल दिया था यहाँ पे तुम खाना लेके आना, हमारा खाना तब तक खत्म हो जाएगा, तो ये प्रयोजन भी किया जाता था।
1: हमें लगता बहुत ओल्ड फैशन्ड है, बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, आज भी अपना पानी साथ में लेकर के चलते हैं, क्योंकि खाना ही नहीं, हम क्या कहते हैं, जैसा अन्न
2: वैसा मन और जैसा पानी
1: वैसी वाणी। ये एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, अभी तो बहुत इजीली अवेलेबल है यूट्यूब आदि पर। एक साइंटिस्ट है, जापानी साइंटिस्ट, इमोटो मसारू, तो उन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने पानी के दो सैंपल लिए एक ही डैम से और उसके फोटो, क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन का फोटो निकाला पहले, फिर उन्होंने जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक के ऊपर लिखा मदर टेरेसा, दूसरे के ऊपर लिखा हिटलर, सेम पानी के सैंपल के ऊपर, और उसको ऐसी जगह पर रखा जहां पर बहुत लोग आते हैं, म्यूजियम जैसा कुछ होता है।
2: अच्छा,
1: अब नेचुरली जब आप मदर टेरेसा पढ़ते हैं
2: तो आपको पीस महसूस करते हैं,
1: पीस है, काइंडनेस है, कंपैशन है, तो वो वाइब्रेशन रेडिएट होता है। और जब आप हिटलर पढ़ते हैं, डिक्टेटर, होलोकॉस्ट, घृणा, नफरत, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और कुछ दिनों के बाद वापस उस पानी के क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन का उन्होंने फोटोग्राफ निकाला, इट्स ऑल अवेलेबल इंटरनेट पर। और आप दोनों के अगर सैंपल्स में फर्क देखेंगे तो एक के ऊपर जो हिटलर वाला था उस पे काले काले धब्बे हैं, और जो मदर टेरेसा वाला था उसका बहुत सुंदर क्रिस्टल का एक फॉर्मेशन बनकर निकला। एंड देन ही डिड मेनी मोर एक्सपेरिमेंट, एक पर लिखा थैंक यू, एक पर लिखा आई हेट यू, एक पर ऐसे आई किल यू, एक पर आई लव यू, ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट करे, एंड फाइनली ही सेड कि हमारे जो वाइब्रेशन है, हमारे जो संकल्प है

0: उसका प्रभाव पानी के ऊपर पड़ता है। वाइब्रेशन और थॉट का जो प्रभाव है, पानी उसको अब्सॉर्ब करती है। हमारी बॉडी कितना पानी है? 70%। मतलब वो बाहर के पानी को तो बाद में इम्पैक्ट करेगी, लेकिन वो पहले तो आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करेगी। इसलिए लोग कहते थे हम किसी के घर का पानी भी नहीं पीते, क्योंकि वो पानी नहीं होता है,
1: वो वाणी होती है,
0: वो उस घर की एनर्जी होती है।
1: एनर्जी होती है,
0: तो आप जब उसको कंज्यूम करते हैं तो उस एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। हम प्योरिटी प्योरिटी की इतनी बातें करते हैं, पानी ये नहीं पीना, प्योर पीना, बिस्लरी का पीना, तो पानी की प्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन मन की प्योरिटी का भी इम्पैक्ट उन चीजों के ऊपर पड़ता है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जल्दी का काम शैतान का क्यों होता है? अब बताते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो मूल बात यह है कि आप बाहर खाना नहीं खाते हैं और हमें भी नहीं खाना चाहिए।
1: मूल बात यह है कि हमें डिसाइड करना है कि हमारी प्रायोरिटी सिर्फ टेस्ट है, कि हमारी प्रायोरिटी हमारी मन की हेल्थ है। और जहाँ तक हो सके, देखो अभी कल्चर थोड़ा ज्यादा चेंज हो रहा है। एक और हमने मजबूरी में पहले खाया, हम कभी कभी मजबूरी में खाया करते थे, आज हम मजबूरी में नहीं खाते। पहले हम घर से टिफिन लेकर के जाते थे, डब्बा लेकर के जाते थे, आज हम घर में बैठे खाना बना सकते हैं, लेकिन हम घर में डब्बा मंगवाते हैं। तो मजबूरी भी नहीं है वो, लेकिन बस अभी हमें आदत सी पड़ गई है उस चीज की, चाहे वो लेजीनेस है, चाहे वो आप उसको टेस्ट की बात करें। और फिर जो वो लेकर के आ रहे हैं ना, पहले तो बनाने में जो इंटेंशन है वो सारा प्रॉफिट का है, जो लेकर के आ रहे हैं वो भी कौन सी एनर्जी से लेकर के आते हैं। आज खाना कितनी देर में पहुंचाना चाहिए?
3: 20-30 मिनट में।
1: ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है,
3: वो जल्दबाजी में ला रहा है।
1: कितनी जल्दी, आज आप अगर देखो तो सड़क पर सबसे ज्यादा फास्ट कौन चला रहे होते हैं?
3: सही बात है।
1: तो ये भी तो उनके ऊपर एक प्रेशर जैसा ही तो है ना स्ट्रेस में, अगर इतनी देर में नहीं पहुंचा तो खाना फ्री है या इतना है, तो वो व्यक्ति की मन की स्थिति क्या होगी? कई बार आप सोचो तो उसकी मन की स्थिति किसमें, वो वाइब्रेशन कहाँ सारा का सारा जाएगा। पहले कोई खाना बनाता था कहते थे प्यार से बनाओ, आराम से बनाओ, भजन चलाते हुए बनाओ। आज खाना भी कैसे बन रहा है? होटल में खाना आराम से या प्यार से नहीं बनता है। कैसे बनता है? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, वो वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद बाहर लाइन लगी हुई है, वो वेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। तो सब जल्दी बना रहे हैं, प्रॉफिट से बना रहे हैं। फिर जो लेकर के जाने वाला है उसको भी जल्दी जल्दी जल्दी। तो फिर हम भी अपने जीवन में सब कुछ क्या करते हैं? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो वो आराम वाली जीवन तो है ही नहीं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: खाना और मन का डायरेक्ट रिलेशन है, कैसे आइए सुनिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: इसमें दोनों बातें हैं, ऐसा नहीं है हम इसको ये नहीं कह सकते कि सब ऐसा करते हैं। कई बार आप देखें कई शेफ्स होते हैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्योरिटी से, बहुत ही दिल से करते हैं, लेकिन हमें हर एक की कॉन्शियसनेस का पता नहीं है।
2: बिल्कुल,
3: इसमें कोई मदर की बात है या नहीं, जो भी बनाने वाला है उसकी मन की स्थिति कैसी है। कई अननोन लोग भी, शेफ्स भी, घर के कुक भी बहुत ज्यादा प्यार से बनाते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: कई मदर भी हो सकते हैं जो बेमन बनाते हैं, उनको काम करना अच्छा लगता है लेकिन खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है।
2: ये बात सही है।
3: डिपेंड करता है, ये मदर की बात नहीं है, ये मंदिर की बात नहीं है, डिपेंड करता है जो भी बनाने वाला है उसके मन की स्थिति कैसी है। आप कभी किचन में जाकर के देखा करो किसी के भी, ज्यादातर आपको क्या लगता है जो वहाँ बनाने वाले होते हैं होटल्स आदि से जो लोग आए होते हैं उनकी मन की स्थिति कैसी होती है?
2: मजबूरी में काम कर रहे होते हैं, रोजगार के लिए कर रहे होते हैं, या कुछ दुख है।
3: ये स्थिति बहुतों की होती है जो अंदर किचन में काम करने वाले होते हैं। चलो सबकी नहीं होगी, उसमें से बहुतों को एडिक्शंस भी बहुत होते हैं क्योंकि नेचुरली वो अपने घर से दूर होते हैं और त्योहारों पर भी नहीं जा पाते। त्योहारों पर जब सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो उनको सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है, सबसे लेट तक चलता है, तो उनकी खुशी का जरिया क्या होता है? फिर कोई ना कोई एडिक्शन, कोई ना कोई, तो वो चीज भी, तो वो खुश नहीं है, वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, कंटेंट नहीं है। जैसे आपने का सारा दिन मजबूरी से कर रहे हैं तो वो वाइब्रेशन खाने को इम्पैक्ट तो करेगा ना। सो इट डजंट मीन रेस्टोरेंट, डजंट मीन घर, इट मीन्स जो बनाने वाला है वो जितनी हायर कॉन्शियसनेस में होगा, खाने वाले को कुछ नहीं करना, उसका मन अपने आप शक्तिशाली होता जाएगा। जैसे आपको कुछ दिल होती थी खाने के लिए तो अंदर किचन में नहीं होगा पर मम्मी की प्लेट में होगा तो वो एकदम क्या कहती है, नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, मेरा पेट भर गया, आप ले लो आप ले लो। होता है ऐसा कि नहीं?
2: मेरा बहुत बार,
3: बहुत बार। अभी आपका अचानक पेट कैसे भर गया? पर वो इंटेंशन में इतना प्यार, इतना वो है, वो खाना फिर लगता है, गिनता नहीं है कोई आपने कितना खाया, टोकता नहीं है। अभी वो कोई बनाने वाला है तो कहता है रोज तो एक रोटी खाते हैं, आज क्या आया जिनको दो क्यों खानी है, क्योंकि बिकॉज फॉर देम इट इज नॉट आउट ऑफ लव, इट कुड बी देयर जॉब ना। इफ दे डूइंग इट वेरी लविंगली, वंडरफुल, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। पर जहां तक हो सके इस चीज को हमें देखना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
4: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
7: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णो केटरर्स, अमेरिका में सबसे बेहतरीन इंडोर और आउटडोर केटरिंग सेवा. सगाई, शादी, बेबी शावर, जन्मदिन पार्टियां और एडल्ट डे केयर. आपके स्थान पर लाइव कुकिंग की सुविधा. हम अमेरिका में ताज़ा फरसान और मिठाइयां बनाते हैं. हम न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में सोमवार से शनिवार तक डिलीवरी के साथ टिफिन सेवा भी प्रदान करते हैं. आज ही बॉम्बे एक्सप्रेस और वैष्णो केटरर्स को कॉल करें 732-986-6241 और विजिट 2849 वुडब्रिज एवेन्यू, एडिसन, न्यू जर्सी.
8: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: खाना खाते समय कॉन्वर्सेशन कैसी होनी चाहिए, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आपने लागत की बात की कि भैया जब घर पे खाना खाते हैं, मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे जो भी बना रहा हो वो बड़े प्यार से बनाते हैं और बोलते हैं नहीं, जैसे मेरी मौसी हमेशा कहती थी कि खाते समय फुलके नहीं गिनते, चुपचाप खा लो, तो उससे नुकसान भी होता है, वजन तो हमारे ही बढ़ रहा है तो प्यार के भी साइड इफेक्ट्स हैं।
4: नहीं, बाद में भले बोलो, होता क्या है, भाव क्या होता है, खाने के समय हैप्पी एनवायरनमेंट होना चाहिए। आपने खाते खाते किसी को टोक दिया तो उसका मन एकदम थोड़ा सा
3: किरकिरा हो गया।
4: अब वो खाना क्या होता था कि खुशी जैसी खुराक नहीं, मैंने एक खुशी भी खुराक है लेकिन वो खाना भी खुराक है, तो वो खाना भी खुशी की स्थिति में खाया हुआ होना चाहिए। आजकल ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है, हम मिलते तो एक ही बार है, दिन भर में किसी के पास टाइम नहीं होता, हम सारे के सारे इकट्ठे मील पर मिलते हैं इकट्ठे बैठ करके, और उसमें हमारी कॉन्वर्सेशन क्या होती है,
3: तुमने सारा दिन क्या किया, ऐसा क्यों कर रहे हो,
4: पहले तो क्या किया, फिर उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या, ऐसा क्या। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि खाना खाते समय कोई भी ऐसी बात नहीं हो जो किसी का मन दुख हो, वो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है ना, तो हेल्थ का ध्यान तो देना ही है लेकिन जैसे आप किसी को कहते ना, अभी नहीं बोलो बाद में बोलते, अभी अभी नहीं समझाओ इसको, आज तो बर्थडे है, बर्थडे के दिन नहीं बोलो, कल बोलेंगे। सो यू डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल देयर मूड, इट्स नॉट दैट यू नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ, अभी नहीं बोलो, खाते खाते नहीं बोलो।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ఫ్యాక్టరీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
1: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్. कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
5: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
4: Renew?
5: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
4: What better way to celebrate than with something timeless?
5: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: क्या आप हेल्थ केयर हासिल करने को लेकर परेशान हैं? क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क लोग परिवारों और छोटे बिजनेसेस के लिए कम दाम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करता है? एप्लीकेशन की चिंता ना कीजिए, SACSS एनरोलमेंट स्पेशलिस्ट्स आपको पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे. हमारे स्टाफ मेंबर्स 20 से अधिक भाषाएं बोलते हैं और आपको सस्ती हेल्थ केयर दिलाने में मदद करेंगे. साउथ एशियन काउंसिल फॉर सोशल सर्विसेज को कॉल करें 7183217929 या SACSS ऑफिस विजिट करें 143-02-45th Ave, Flushing, New York. अधिक जानकारी के लिए करें www.sacssny.org.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या हमें हमेशा माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए? पर कैसे? आइए बताते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो ये बहुत अच्छी बात की कि खाते समय टोकना नहीं, क्योंकि अक्सर क्या होता है जैसा आपने कहा कि एक ही बार ज्यादातर समय मिल पाता है कि साथ में मिलके खाना खाएं, क्योंकि सुबह हो सकता है ब्रेकफास्ट पे बच्चे स्कूल गए हुए हों, कॉलेज गए हुए हों, अगर दोनों वर्क कर रहे हैं तो वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो रात को ही शायद एक मौका मिल पाता है या वीकेंड पे मिल पाता है कि साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, और उस समय बातचीत कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी लगता है कि हमको सिखाना भी है इनको,
4: सारा वही समझा दे।
3: तो जैसे मेरे घर पे मैं एक सिंपल रूल बना रखा है कि जब हम खाना खाएंगे हम एक तो इकट्ठा खाएंगे, और उस समय ना टेलीविजन देखना है और ना फोन देखना है। मैं भी कई बार करता हूँ, मैं टोक देता हूँ। जैसे मुझे याद है मेरे पापा हॉस्टल में पले बड़े हैं, तो बहुत सारे टेबल एटिकेट उनके थे जो मेरे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि जब खाते हैं तो चम्मच दांत में नहीं लगना चाहिए, अच्छी आवाज नहीं होती है, सुर सुर साउंड नहीं आना चाहिए व्हेन यू नो ड्रिंकिंग समथिंग एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें मैं भी कोशिश करता हूँ अपने बच्चों को बताने की, फोर्क लेफ्ट हैंड में, ये राइट हैंड, नाइफ किस लिए होता है एटसेट्रा। और कई बार
4: व्हेन यू फिनिश कीप इट टुगेदर,
3: वेट फॉर द अदर पर्सन, जब वो खत्म कर ले तब उठो। एक चीज जो है वो माइंडफुल ईटिंग, कि उस माहौल में रहो, जो खा रहे हो उस पे ध्यान दो,
4: एंजॉय करो,
3: तो वो आपको ज्यादा
4: लगता है। कहते हैं ना हम, लगता है ज्यादा,
3: बिल्कुल। लेकिन आपकी बातचीत से मुझे समझ में आया शायद मैं सारे समय उनको सिखाने में दे रहा हूँ या उनको टोक रहा हूँ, तो माहौल तो किरकिरा हो गया।
4: पर सिखाना भी तो है ना, आज पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। लेकिन केवल सिखाने का समय खाने को नहीं बनाओ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिखाएं नहीं। देखो, जो चीजें पेरेंट्स सिखा सकते हैं वो तो कोई भी नहीं सिखा सकता। एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उनकी एक अच्छी अपब्रिंगिंग हो, उनको हम सिखाएं। पर सिखाने के समय दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, जो चीज आप उनको सिखाना चाह रहे हैं वो चीज से हम बहुत बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब उनकी कोई गलती है या वो, फिर जब आप समझाएंगे ना तो वो आपके बोल जो शब्द होंगे
3: वो कटु होंगे।
4: हाँ,
3: इरिटेशन में बोलते हैं हम,
4: और फिर वो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, आपकी अच्छे से अच्छी एडवाइस का भी कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको किसी को शिक्षा देनी है, इफ यू वांट टू टीच समबडी, पहले तो उसकी आदत से आप ये रियलाइज करें कि वो व्यक्ति और आदत अलग है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: चलिए जानते हैं बच्चों को सिखाने का सही समय क्या होता है।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: इशू अलग है और इंसान अलग है। इशू को सॉल्व करो, पर्सन को सॉल्व मत करो।
5: तो पर्सन के प्रति प्यार हो, उसका एक इशू ही तो ठीक नहीं है ना। लेकिन वो इशू आपको डिस्टर्ब कर देता है तो प्यार तो खत्म हो गया। अब तो आपसे उनको क्या जा रहा है, नेगेटिव एनर्जी जा रही है। तो अगर वो चीज आपको डिस्टर्ब कर भी रही है, समझो हम इतने परफेक्ट नहीं बने, आप उस समय नहीं बोलो। पहले आप अपने को ठीक करो। उनको शिक्षा देने से पहले आप खुद को शिक्षा दे करके पहले खुद को स्टेबल करो। एंड सेकंड चीज, शिक्षा तभी दो जब वो भी स्टेबल हो। समझो मैं सड़क पर चल रही हूँ, मैं फोन देखते देखते गड्ढे में गिर गई। अब मेरी गलती है, मुझे सड़क पर चलते चलते फोन पर नहीं रहना चाहिए था, मेरी गलती। पर अब मैं गिर गई ना, अब मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई, तो आप पहले क्या करेंगे? आप एक बार उसको पूछते हो, ठीक है, सब है, कुछ है तो नहीं, मैंने जो उसको फर्स्ट एड देना है वो तो देंगे ना। फिर आप उसको जरूर शिक्षा दें कि चलते चलते फोन पर
4: नहीं रहना चाहिए,
5: नहीं करना चाहिए। तो शिक्षा देना गलत नहीं है। इफ यू वांट टू टीच समबडी, इफ यू वांट टू एजुकेट समबडी, एंड आई आल्सो फील देयर आर सर्टेन थिंग्स जो पेरेंट्स को करना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रोल फ्रेंड नहीं प्ले कर सकते, वो रोल बाद में कोई प्ले नहीं कर सकता, वो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट जो हमने कहा, दोनों चीजें देखनी है, आप भी स्टेबल
4: और वो भी स्टेबल,
5: और वो भी स्टेबल, और खाने के टेबल पर नहीं।
4: हाँ, खाने के टेबल, बहुत सही बात बोली।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है मेरी देसी दुनिया। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। क्लॉक बोल रहा है हसल करने का टाइम आ चुका है, दिल बोल रहा है परांठे खाने का टाइम आ चुका है, और बॉस बोल रहा है ईमेल चेक किया। मतलब लाइफ बिल्कुल बैलेंस्ड है, और इसीलिए शुरू हो चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज का मिशन काफी सिंपल है, थोड़ा सा बॉलीवुड की बातें करने वाले हैं, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया के बारे में बात करेंगे, थोड़ी बकबक एंड थोड़ी सी अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, तुम्हें यहाँ वहाँ की खबरें भी पता चल जाएंगी, और साथ साथ में तुम्हें मिलने वाली है मिर्ची दार वाइब्स। एंड ऑफकोर्स आई हैव गॉट सम मिर्ची दार बैंगर्स फॉर यू। प्लेलिस्ट तैयार है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट चाय कॉफी सब कुछ तैयार है। और अगर फिलहाल तुम कम्यूट पर निकल चुके हो, या फिर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर पजामा पहन कर रेडी हो चुके हो, या फिर सीक्रेटली ब्रेकफास्ट के साथ साथ कल रात की बिरयानी भी चट कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। और ऑफ कोर्स मुझे सोशल मीडिया पर भी अपने साथ रख सकते हो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल चिपक के बैठो यहीं पर आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स। शो शुरू हो चुका है, नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। स्टे ट्यून्ड।

0: Mirchi.
1: Escabana, la buscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Mirchi.
4: It's Navid.
3: बोल रहा हूँ।
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
3: वो आपको मुझे बताना होगा।
4: तो मैं अभी बता दूँ?
3: एक सेकंड, ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
4: संजना।
3: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का।
3: क्या बात कर रही है, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
3: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं।
3: अरे बाप रे। तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में, थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में। जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता हूं।
3: ओके चलिए।
5: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, 2 मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
5: सर थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का।
3: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है। रेडियो मिर्ची पे।
4: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था।
3: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे। फिलहाल आपका बन गया है। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू। थैंक यू।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
16: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
17: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
18: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
17: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
19: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the U.S.
0: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi aadmi.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे लिए एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन। एग्जैक्टली, हम चलने वाले हैं पता करने आज का दिन हिस्ट्री में क्यों अमेजिंग था। 1631 में मुमताज महल पास अवे एंड इयर्स लेटर दैट लव स्टोरी इंस्पायर्ड द बिल्डिंग ऑफ द ताज महल। जंप टू 1775, बैटल ऑफ बंकर हिल। अमेरिका वाज बेसिकली इन इट्स कॉम्प्लिकेटेड फेज। 1885 में न्यूयॉर्क रिसीव्ड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रॉम फ्रांस। इमेजिन करो गेटिंग अ जायंट स्टैच्यू डिलीवर्ड। और यहाँ पर मेरे नेबर्स अमेजॉन पैकेज के साइज को देखकर मुझे जज करते हैं। 1944 में आइसलैंड बिकेम इंडिपेंडेंट एंड 1961 में इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सुपरसोनिक फाइटर जेट द हैल HF-24 मारुत टुक इट्स मेडन फ्लाइट। 1972 में वाटरगेट हैपेंड एंड 1991 में राजीव गांधी वॉज पोस्टमसली अवार्डेड भारत रत्न। एंड दैट्स इट फॉर टाइम ट्रैवलिंग फॉर टुडे। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: This is Mirchi Mornings. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. Namaste, because International Yoga Day is coming up on 21st of June. Mirchi ने decide किया है कि gym membership थोड़ी सी expensive है, so हम free में तुम्हें दे रहे हैं yoga classes.
2: Mirchi Yoga Class.
1: Welcome

टू मिर्ची योगाश्रम और आज की क्लास गुरु प्रसन्नंदा के साथ। आज हम सीखेंगे द शादी कब करोगे प्राणायाम। सबसे पहले अपना बैक स्ट्रेट कीजिए, फेस को काम कीजिए, इनर केओस को कंट्रोल कीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि आपके दूर के रिश्ते वाली एक आंटी ने आकर आपसे पूछा कि बेटा शादी कब कर रहे हो। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक लंबी सांस अंदर खींचो, फिर एक स्माइल के साथ सांस बाहर छोड़ते हुए नॉट हेलो, नॉट हाउ आर यू, डायरेक्ट अटैक करो और कहो, आंटी आपके जाने के बाद। अब सांस अंदर लो, एक स्माइल निकालो, अब सांस बाहर निकालो। नेक्स्ट आंटी, रिपीट अगेन। बाय राउंड 11 तुम्हारा सोल जो है ना, तुम्हारी बॉडी को छोड़ देगा, एंड बाय राउंड 14 एनलाइटनमेंट यानी निर्वाणा की प्राप्ति हो जाएगी। एडवांस स्टूडेंट्स कैन ऐड हेड नॉडिंग एंड फेक चेकिंग मैट्रिमोनियल एप्स। इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21st of June को सेलिब्रेट होता है, बिकॉज बैलेंस, वेलनेस एंड इनर पीस, ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली जब इतने सारे काम होते हैं घर के और बाहर के, ये पीस अटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस ईयर द फोकस ग्लोबली इज अराउंड हेल्थियर एजिंग। फटा बच्चे मुझे अपने बेस्ट और फेवरेट योगा पोजेस या फिर फनीएस्ट योगा पोजेस बता सकते हो तो व्हाट्सएप करके 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244, या फिर तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड द बेस्ट वन विल मेक इट ऑन एयर। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
5: अब मिर्ची का
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग माय दोस्त, मैं हूं तुम्हारी होस्ट मिर्ची मॉर्निंग्स है नाम शो का, और अब हम पता करने वाले हैं कि वेदर डिपार्टमेंट क्या कह रहा है। आज का फोकस सुनने के बाद ही डिसाइड करना आज तुम पहनने क्या वाले हो। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 60 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स पार्टली क्लाउडी, यानी कि वेदर ने कहा है फुल सिचुएशनशिप चल रही है तुम्हारे और वेदर के बीच में। कमिटमेंट टू सनशाइन अभी फिलहाल आया नहीं है। सुबह के 6 बजे तक तो काफी क्लाउडी माहौल था, लेकिन 6 बजे के बाद धीरे धीरे क्लाउड्स छटने लगे हैं। इट्स स्टिल अ लिटिल बिट क्लाउडी, सो इफ योर मॉर्निंग मूड स्टार्ट्स ड्रामेटिक डोंट यू वरी, स्काई भी अपने इमोशंस सुबह सुबह ही प्रोसेस कर रहे होते हैं। एंड फन फैक्ट ये है कि आज का फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम है कम्पेयर टू वॉट एक्चुअली इट इज। पूरे दिन भर का तापमान रहने वाला है 59 डिग्री से लेकर 80 डिग्री फारेनहाइट तक, लेकिन फील होने वाला है 60-79 डिग्री फारेनहाइट तक। एंड रेन रिलैक्स, नेक्स्ट 24 आवर्स में 1 मिलीमीटर की बरसात एक्सपेक्टेड है, अनलाइक लास्ट 24 आवर्स जहां पर हमने 0 मिलीमीटर की बरसात देखी, यानी कि अम्ब्रेलास को तो छुट्टी दे दी थी। आज के दिन कैरी करना पड़ेगा, नहीं तो शायद तुम्हारी हेयर स्टाइल थोड़ी बहुत खराब हो सकती है। ऑल्सो आज का हाई इज ऑलमोस्ट द सेम एज यस्टरडे, कल हमने देखा 54-78 डिग्री फारेनहाइट का रेंज, और आज 59-80 डिग्री फारेनहाइट के बीच में फ्लक्चुएट करने वाला है टेम्परेचर। सो वेदर आज काफी ठीक ठाक सा है, बाहर निकलते टाइम लेयर के प्लेयर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ साथ में SPF 50++++ लगाना भी जरूरी है, एंड ऑफ कोर्स ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। एंड ये बोलने की जरूरत है कि अपनी वाइब मिर्चीदार रखो, नहीं ना मिर्ची लगाए रखो, मुझे अपने साथ जमाए रखो। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब मुझसे बातें करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम द शो तो फॉलो करो मुझे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472444। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी आ चुकी है पता करने का दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले अमेरिका ने अपना मिलिट्री कमांड का नाम ऑफिशियली अपडेट करके इंडो पैसिफिक से वापस पैसिफिक कमांड कर दिया है। मतलब ऑफिस ईमेल सिग्नेचर चेंज हो चुका है, काम ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिपोर्टेडली सेम ही रहने वाले हैं। नंबर टू पर, एट द G7 discussions, इंडियन PM नरेंद्र मोदी स्पोक अबाउट सी फेयर सेफ्टी एंड हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग श्योर पीपल वर्किंग एट द सी कैन डू देयर जॉब्स विदाउट फियर। ये रिमाइंडर भी था कि हेडलाइंस के पीछे रियल फैमिलीज और रियल पीपल होते हैं। रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन वर्किंग ओशंस, शिप्स एंड इम्पॉसिबल टाइम जोन्स। एंड नंबर थ्री पर, फीफा वर्ल्ड कप से लायनल मेसी स्कोर्ड इन अर्जेंटीनाज वर्ल्ड कप ओपनर एंड गॉट इमोशनल आफ्टरवर्ड्स। मतलब इमेजिन बींग दैट सक्सेसफुल still crying after achieving another goal. Messi has now scored 5 goals from outside the box in his FIFA World Cup career. There was also a post-match debate online around an on-field incident because Argentina captain Lionel Messi escaped red card after stamping on Algeria's Issa Mandi during the FIFA World Cup 2026 opener. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Prisala tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vieja la burka. Milchi, burka.
1: हेलो,
2: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
1: हाँ जी।
2: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
1: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर,
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
1: किसी का
2: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
1: लगाया नहीं
2: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
1: गायब
2: नहीं। मैं कल को
1: फोटो,
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
1: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है।
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
1: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसमें हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे।
1: नहीं सर, क्या बात, चुन के बनाया है?
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम। ऐसी कोई बात नहीं
2: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है
1: नहीं।
2: दिखाइए आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
1: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
2: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
1: कहाँ होता है बताइए?
3: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
12: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
11: Renew?
12: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
11: What better way to celebrate than with something timeless?
12: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
13: Oak Tree Road lo best diamond jewelry kosam search chestunnara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
15: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
16: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
17: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
18: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.

0: MIRCHI Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. फुटबॉल फैंस पे अटेंशन. इस साल लायनल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों ही फीफा वर्ल्ड कप में अपना 6th वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं. एंड कल रात को लायनल मेसी ऑफिशियली किक्ड ऑफ हिज 6th फीफा वर्ल्ड कप कैंपेन विद अर्जेंटीनाज ओपनिंग मैच अगेंस्ट अल्जीरिया. 6 वर्ल्ड कप देख लिया भाई ने. एंड सम ऑफ अस हैवंट इवन फिनिश्ड 6 एपिसोड्स ऑफ वन शो विदाउट स्टार्टिंग अनदर. और अगर तुम लेट तक जाकर मैच देख रहे थे तो कांग्रेचुलेशंस. आज अगर तुम्हारी मीटिंग है ऑन कैमरा तो कैमरा ऑफ रखने की जरूरत है तुम्हें. बट वेट, फुटबॉल शिफ्ट खत्म नहीं हुआ है, बिकॉज आज दोपहर में सारी आंखें सारी निगाहें क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर रहने वाली है एज पोर्टुगल ओपन्स देयर कैंपेन अगेंस्ट DR कॉन्गो. मतलब कि लंच ब्रेक ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है. एंड कैन वी जस्ट अप्रिशिएट दिस फॉर अ सेकेंड. मतलब मेसी एंड रोनाल्डो स्टिल शोइंग अप, स्टिल क्रिएटिंग मोमेंट्स आफ्टर 6 वर्ल्ड कप्स. वाओ. वैसे तुम मुझे बताओ, तुम टीम मेसी हो या टीम रोनाल्डो हो? फटाफट से मुझे डीएम करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. एंड व्हाइल यू आर एट इट, जल्दी से मैं तुम्हें याद दिला दूं, तनिष्क पर चल रहा है फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज करो अपना पुराना गोल्ड एंड गेट $5 का एक्स्ट्रा बेनिफिट पर ग्राम ऑन एक्सचेंज गोल्ड अपॉन डायमंड परचेज. और साथ में अगर तुम्हारा पुराना गोल्ड जो है वो 9 कैरेट से ऊपर है तो डिडक्शन उस पे 0% होगा अगर तुम एक्सचेंज कराओगे अपना गोल्ड जाकर वहां पर. तो तनिष्क के शोरूम पर फटाफट से पहुंचो, आस्क देम फॉर फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज ऑफर्स, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है. फटाफट से अभी लगाती हूं मैं तुम्हारे लिए मिर्ची दर बैंगर्स ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: परेशानी। जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें। वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient.
3: Very complex.
4: Clumsy.
5: Confusion ही confusion.
2: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक. Software एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
14: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
13: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
15: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है.
13: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
16: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट। शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स और मेरा नाम है प्रिसिला। और अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो आज का दिन सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी चाय जो है वो काफी गर्म है, तुम्हारा ट्रैफिक जो है काफी कम है और लोग जो है वो आज तुम्हें बहुत ज्यादा खुश करने वाले, ये मेरी दुआ है तुम्हारे लिए। लेकिन साथ साथ में मैं तुम्हें ये भी बताने वाली हूँ कि आज तुम्हारे बर्थडे क्लब में कौन कौन से सेलिब्रिटीज तुम्हारे साथ शामिल है। सबसे पहले बैरी मैनिलो जो कि म्यूजिशियन है, एंटरटेनर है एंड काफी फेमस है। देन वी हैव वीनस विलियम्स हु इज अ टेनिस लेजेंड और जो इन्हें नहीं जानता वो एक रॉक के अंडर जी रहा है। देन वी हैव केंड्रिक लमार, ग्रैमी विनिंग रैपर। ऑल्सो साथ साथ में वी हैव ग्रेग किनियर, विल फोर्टे एंड जोडी विटेकर। तो अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी वाला बर्थडे है तो मुझे डीएम कर सकते हो तुम अपने बर्थडे शाउट आउट, अपने बर्थडे विशेस या फिर अपने बर्थडे इनवाइट्स भी केक भी भेज सकते हो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर अगर मुझे मैसेज भेजना चाह रहे हो तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
5: चमकते सितारे 2026.
4: From graceful Kathak to high energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
6: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
7: पहले भी मैं
8: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा,
9: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. presents अ नाइट लार्जर देन लाइफ, विशाल मिश्रा's पागलपन टूर, फ्राइडे जून 26th, हार्ड रॉक लाइव, ETS अरीना, अटलांटिक सिटी। बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।
10: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello G, time for your gold and silver rate update on Mirchi Mornings. Mera naam hai Priscilla.
2: Raj Jules wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,320. $4,320 पट रहा है उसके साथ. आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. इस फादर्स डे की सिलेक्शन पे जब 22 कैरेट गोल्ड मेंस ब्रेसलेट, 22 कैरेट गोल्ड की चेन, 22 कैरेट गोल्ड के मेंस सिक्की कड़ा या प्लैटिनम की चेन्स और प्लैटिनम के मेंस बैंड. आइए राज ज्वेल्स की खूबसूरत सी सिलेक्शन देखने के लिए, जिसमें आप आज 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी अप्रूव होने पे घर ले जा सकते हैं और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स को पैसे दे सकते हैं फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए. मिलके राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग.
1: And that's it for your gold and silver का latest rate update only on Mirchi Mornings. मुझसे बातें करनी है तो कनेक्ट करो. Mirchi Priss is my handle name on Instagram and X. And WhatsApp number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्रो फोन लेके आ।
2: डिस्प्ले आ रहा है?
3: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार?
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं है आज तक। इधर रख। ये क्या है यार ये?
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: थोड़ी ना
3: मैंने आपने नहीं बनाया, आपको पहले बोलना चाहिए था यार। आपको
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं गुब्बारे वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराई,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए
3: यहाँ, फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है, आप
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू कु।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
12: Chamakte Sitare 2026.
11: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
13: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
14: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
14: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
13: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
15: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
16: पहले भी मैं तुमसे मिला।
17: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा। विशाल मिश्रा
18: Chetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
19: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
0: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी, हर ड्राइव बनेगी यादगार।
10: मिर्ची फ्रेश माल,
15: मस्ती स्वैग और जबरदस्त बीट्स हो तो बस एक ही शब्द निकलता है, वल्ला।
7: ओ लुक

0: इस गाने को आवाज दी है बयानी और हार्डी संधू ने, म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। कॉकटेल 2 से सुनते रहिए बल्ला, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग। जरा बारी आ चुकी है
3: मिर्ची राशि जोन।
2: सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि, रिलेशनशिप में कुछ शिफ्ट आ रहा है एंड ऑनेस्टली इट्स अ गुड शिफ्ट। डोंट क्लिंग टू ओल्ड स्क्रीनशॉट्स एंड ओल्ड आर्ग्यूमेंट्स। फ्यूचर वर्जन को ऑलरेडी थैंक गॉड बोलना सिखा दो। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक कोरल, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज का वाइब है स्टॉप कैरिंग द होल ग्रुप प्रोजेक्ट। अगर तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो तो स्पीक अप। Respect isn't auto renewed. Lucky color is forest green. Lucky number is 22. Gemini yani mithun rashi. Sab advice dene wale hain aaj, lekin inner voice quietly tumhe bolne wale hain. I told you already and trust your instincts. Overthinking charges extra lagenge, isliye mat karna. Lucky color is silver mist. Lucky number is 5. Cancer yani kark rashi. Abhi sab random lag raha hai, hai na? रिलैक्स, पीसेस कनेक्ट हो रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, यूनिवर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। लकी कलर इज मून व्हाइट, लकी नंबर इज 18। लियो यानी कि सिंह राशि, स्मॉल मिस्टेक्स चलता है यार, जो प्यार और एनर्जी तुम लोगों को देते हो दैट्स द रियल फ्लेक्स। आज एक्स्ट्रा हग्स देना, लेस गिल्ट देना और अपनी लाइफ को सॉर्टेड रखना। लकी कलर इज सनसेट गोल्ड, लकी नंबर इज 31। वर्गो यानी कन्या राशि, प्लॉट ट्विस्ट टुडे, डू समथिंग सिर्फ फन के लिए। एक्सेल शीट बंद करो, लैपटॉप बंद करो, लाइफ को थोड़ा सा सरप्राइज करो एंड डू समथिंग जस्ट एवे। लकी कलर इज लैवेंडर ग्रे, लकी नंबर इज 9। एंड दैट्स इट फॉर पहली 6 राशियां। बाकी की 6 राशियों को लेकर आती हूँ राशि जोन पार्ट 2 में थोड़ी सी देर में। तब तक तुम सुनो ये मिर्ची दार बैंगर्स एंड ऑफकोर्स मुझे फॉलो करो जाकर, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mitri Mornings. Mitri Mornings with Priscilla. It's hot.
2: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब बारी है राशि जोन पार्ट टू की.
1: मिर्ची राशि जोन.
2: लीब्रा यानी तुला राशि, आज स्टेशनरी मत रहना. मूव, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, न्यू फेसेस, न्यू इंस्पिरेशंस. जीपीएस जो है वो बोर नहीं होना चाहिए आज. लकी कलर इज स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 27. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज वेवलेंथ मिसमैच हो सकता है. इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एवरीवन, मे बी चेंज द प्लेलिस्ट फर्स्ट. लकी कलर इज प्लम पर्पल एंड लकी नंबर इज 11. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, अगर तुम अकेला ओपिनियन लेकर खड़े हो तो भी स्टैंड लो. कॉन्फिडेंस पर टैक्स नहीं लगता है. लकी कलर इज कॉपर ऑरेंज. लकी नंबर इज 33. केप्रिकॉन यानी मकर राशि, टर्निंग पॉइंट आ रहा है. डिसीजंस फास्ट ले लो. हार्ट को थोड़ा सा वेट लिस्ट पे रखो. स्ट्रेटजी को फ्रंट रो दे दो. लकी कलर इज मिडनाइट ब्लू. लकी नंबर इज 6. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आज एडवाइस मत पुश करो, उल्टा साइकोलॉजी ट्राई करो. कभी कभी ना मत करो सुन के लोग वही करते हैं जो मत करने को कहा गया है. ह्यूमन सॉफ्टवेयर का वायरिंग थोड़ा सा डिफरेंट है. लकी कलर इज आइस मिंट. लकी नंबर इज 24. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी मीन राशि, सोल्यूशन दिख रहा है. एनर्जी लगेगी इस काम में, लेकिन ऑनेस्टली प्रोक्रास्टिनेशन को फुल टाइम जॉब बना चुके हो तुम, इसीलिए उसे छोड़ो और अपना काम करना शुरू करो. लकी कलर इज ओशन टील. लकी नंबर इज 6.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
5: Chamakte Sitare 2026.
4: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
6: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Her drive banegi yaadgar.
7: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा बैक टू बैक गाना सुनेगा
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 90s का एक्शन देख देख कर जब हम पले बड़े, तो हमें रियलाइज नहीं हुआ कभी कि यार ये जो एक्शन किया करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म के लिए है। हम हमेशा इतने ज्यादा मेस्मराइज रहा करते थे कि ओ हो हीरो क्या मारता है यार, क्या लड़ाई है, डुशुम बिशुम। लेकिन जब मौत का कुआं बचपन में देखा करते थे और जो मैंने अब बड़े होने के बाद देखा, भाई दोनों ही मेरे एक्सपीरियंसेस में जमीन आसमान का फर्क आ गया।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. Aapki 90s ki yaadon ka pitara. And now you tune in with me on Mirchi. And वाकई में यार, I mean, मौत का कुआ जब हम बचपन में देखा करते थे तो हम इतने excited रहा करते थे और हमेशा mesmerized कि वाह यार ये बंदा कैसे बाइक चला रहा है यार, ऐसी जगह पे दीवार पे बाइक चला रहा है। फिर गाड़ी भी आ जाती थी उसके अंदर। अब जब बड़ी हुई ना मैं, और अभी कुछ टाइम पहले एक्चुअली मौका मिला मुझे, एक लोकल मेला लगा हुआ था जब मैं हैदराबाद गई थी और वहां पर मौत का कुआं लगा हुआ था, तो हम सारे कजिन्स ने बोला यार बचपन की यादें ताजा करते चलते मौत का कुआं देखने के लिए। आई स्वेयर वो मौत का कुआं, वाकई में मुझे मौत का कुआं लगा। बचपन में हम सिर्फ नाम से खेला करते थे कि अरे यार मजा आएगा, मरता थोड़ी है कोई। लेकिन जब मैंने वो मौत का कुआं देखा, आई मीन पहले तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां मेरी ढाई हो गई। दूसरी बात ये कि जब मैंने उन बंदों को बाइक चलाते हुए देखा बिना हेलमेट के देखा, और मैंने ये देखा कि ये हाथ छोड़ छोड़ के बाइक चला रहे हैं, तो मेरी तो सांसें अटक गई यार। ऊपर से वो बंदा जो कार चला रहा था, वो कार से बाहर निकल के कार चला रहा था, हाथ हिला हिला के कार चला रहा था, पैसे अपने हाथों से कलेक्ट कर करके कार चला रहा था। और वहां पर बाइक एक या कार एक नहीं थी, बाइक्स भी दो तीन थी और कारें दो थी। दैट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी। एंड मैं सही बता रही हूँ, पूरे टाइम आई वॉज नॉट एट ऑल मेस्मराइज दिस टाइम। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना दिल थाम के बैठी हुई थी और दुआ कर रही थी कि बस अलामिया यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक्शन सीन्स 90s की दौर में जब हीरो किया करते थे और फिर हम जब उसी से रिलेट करते हुए ये एक्शन इकलौता जो हमारी लाइफ में रियल हुआ करता था वो देखा करते थे, तो बड़े खुश हो जाया करते थे। अब ना बाबा ना, हिला के रख दिया था मुझे इस एक्सपीरियंस ने, और मैंने और मेरे कजिन ने भी डिसाइड किया अब कभी मौत का कुआं नहीं देखेंगे रे बाबा। इनफैक्ट आई ऑल्सो समवेयर फील कि द एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू जस्ट स्टेप अप अ बिट एंड टेक अ कॉल ऑन द सेफ्टी पर्सपेक्टिव ऑफ द मौत का कुआ, बिकॉज आई फील फॉर दोज पीपल जो ये काम कर रहे हैं। देर इज अ लॉट ऑफ सेफ्टी एक्शन जो रेगुलेट कर सकते हैं एंड स्टिल दिस बिजनेस कैन गो ऑन। आई होप समवन्स लिसनिंग टू मी और ये एक्शन ले ले। बढ़िया, जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालते हुए आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana, rabana, burga, burga, la virba la burga, Mirci, burga! Mirci?
1: It's Navid.
0: बोल रहा हूँ.
1: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
0: वो आपको मुझे बताना होगा.
1: तो मैं अभी बता दूँ?
0: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
1: संजना.
0: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
1: अपने हस्बैंड का.
0: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
1: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा.
0: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
1: भड़क भी जाते हैं.
0: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
1: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
0: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
1: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताता
0: हूं. ओके चलिए. हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
1: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
0: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का. मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है.
1: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था.
0: हम तो किसी का ही बनाते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ू कू. थैंक यू.
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है.
6: पहले भी मैं तुमसे मिला.
7: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा.
8: विशाल मिश्रा.
5: अमित चेटी ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ. विशाल मिश्रा पागलपन टूर, फ्राइडे जून 26th, हार्ड रॉक लाइव, ईटेस अरीना, अटलांटिक सिटी. बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com.
9: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
10: I am not going to bed with you ever again.
9: But why? What did I do?
10: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
9: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
10: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
9: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
10: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
9: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
11: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं.
5: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी.
11: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले.
12: अभी न जाओ छोड़ कर.
5: 28th June, 3 p.m. at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे यार की शादी है ये फिल्म देखने के लिए ना पूरी बारात गई थी हम कजिन्स की। सीरियसली गर्मियों की छुट्टियों का टाइम था और हम ये मूवी सब एक साथ देखकर आए थे। इस फिल्म की याद कुछ और ही है इस वजह से।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। अब देखो मेरे लिए एक्सपीरियंस अलग है लेकिन मूवी का एक्सपीरियंस अलग है। एंड ये फिल्म जिसमें कि ट्यूलिप जोशी लीड कर रही हैं, एक्चुअली यही रोल अमीषा पटेल को ऑफर किया गया था लेकिन तब तक तो वो सुपर स्टार हो गई थी, उनके पास टाइम नहीं था एंड उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इस फिल्म को करने से बिकॉज उनको ये लगा कि यार इस फिल्म में एक्ट करने से कोई मतलब नहीं है बिकॉज इसके अंदर एक फ्लॉप एक्टर है और उनके करियर की सिर्फ शुरुआत है। वो फ्लॉप एक्टर जिसके बारे में वो बात कर रही थी, दैट वाज उदय चोपड़ा। फिर तो ऑफ कोर्स ट्यूलिप जोशी अमीषा पटेल की जगह आ गई लेकिन इसका जो असर हुआ वो ये हुआ कि उदय चोपड़ा इस स्टेटमेंट को लेकर बड़े गुस्से में थे। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला था कि इस एक्ट्रेस के साथ यशराज बैनर कभी काम नहीं करेगा। एंड बिहाइंड द सीन्स की अगर बात की जाए ना तो यार वो गाना तो हम सभी को याद है कि हम दोनों जैसा है कौन यहाँ। ये गाना जब शूट हो रहा था तो पीछे एक बड़ा सा बोर्ड है जिसको इन्होंने हाईलाइट नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, कुछ एडिट्स वेडिट्स का प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये बोर्ड ना बहुत ही दिमाग लगा के बनाया गया था। वो बोर्ड नहीं होता जिसमें फॉर्मर पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनके नाम होते हैं, तो इस बोर्ड के ऊपर विनर्स के नाम थे, विनर्स जोड़ी के नाम थे फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1988। और पता है ये जो जोड़िया थी ये कहां से निकल के आ रही थी? यशराज बैनर की मूवी के बनी हुई जो फिल्में थी। 1989 की बात करें तो चांदनी के कैरेक्टर्स जो ऋषि कपूर और श्रीदेवी ने प्ले करे थे, रोहित और चांदनी, उनके नाम लिखे हुए थे। अगर 1991 की बात करें तो लम्हे मूवी जो कि अगेन यशराज बैनर की थी, उसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी के कैरेक्टर्स वीरेन और पूजा के नाम लिखे हुए थे। देयर वाज 1993 के डर के कैरेक्टर्स राहुल और किरण, डीडीएलजे के कैरेक्टर्स के नाम राज और सिमरन, ये वो जोड़िया थी जिनको की उस बोर्ड के ऊपर हाईलाइट किया गया था जिसमें निशा राहुल ये भी पीछे नहीं थे। फ्रॉम दिल तो पागल है, मोहब्बतें से आर्यन और मेघा भी वहां पे मौजूद थे। आदित्य और सुहानी साथिया से इनके नाम भी वहां मौजूद थे फॉर द ईयर 2002। और ऐसे कर करके यशराज बैनर्स की जो ये सारी फिल्में थी उनके जो मेन लीड्स थे, जो मेन कपल्स थे, उनके सबके नाम लिखे हुए थे एज द विनर्स ऑन दैट बोर्ड। सैडली उसे हाईलाइट क्यों नहीं किया, वो वाकई में इतना हाईलाइट पॉइंट था क्योंकि मुझ जैसे जो फिल्मी लोग है ना हमें ये डिटेलिंग बड़ी पसंद आती है। चलो जी अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो, ऊपर नीचे, वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है, और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती ही है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
8: विशाल मिश्रा लाइव इन न्यू जर्सी, फ्राइडे जून 26, हार्ड रॉक अटलांटिक सिटी। बुक एट टिकटमास्टर एंड saiusainc.com।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: It's 11:30 AM. Mirchi time check.
9: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
12: Oh no!
13: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
14: तेरा क्या होगा कालिया?
15: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
14: अब मिर्ची खा।
16: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూసివ్ డైమండ్ స్టోర్.
6: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मेरे यार की शादी है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग. बस इसी फिल्म से इंस्पायर हुई थी ये.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और हम मासूम से लोग, जब मेरे यार की शादी आई थी, एट दैट टाइम जब इस फिल्म को देख रहे थे, हमें नहीं पता था कि देयर इज एन इंग्लिश मूवी जिसको कि देखने के बाद मेरे यार की शादी बनाई गई थी. एंड जब मैंने ये इंग्लिश मूवी देखी स्टारिंग जूलिया रॉबर्ट्स, जो 1997 की एक हॉलीवुड फिल्म थी, आई वॉज इन लव विद द मूवी यार. दो मैंने मेरे यार की शादी देखी हुई है स्टिल, बिकॉज ऑफ कोर्स इंग्लिश मूवी में ड्रामा कम और इमोशन ज्यादा थे. इट्स जस्ट दैट कि उसी चीज को अगर हम इंडियनाइज कर देंगे और उसके अंदर खूब ड्रामा और पूरा फैमिली ड्रामा भर देंगे, तो वो कैसी निकल के आएगी? बिल्कुल मेरे यार की शादी है जैसी निकल के आएगी. वेल स्टिल, मतलब ये बात जानने में कि मेरे यार की शादी है इज अ कॉपी ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, मुझे काफी साल लग गए ये सफर तय करने में. बिकॉज दैट वॉज अ टाइम जब मैं सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड मूवीज देखा करती थी, एंड लेटर ऑन हमारी जिंदगी में हॉलीवुड कहीं आया थैंक्स टू द चैनल्स जो केबल में इंट्रोड्यूस हुए थे, स्पेशली HBO. बट डिड यू नो कि ये जो मूवी थी, ये प्रीतम दा और जीत गांगुली का पहला मेजर प्रोजेक्ट था एज म्यूजिक डायरेक्टर्स, एंड इन्होंने एज अ डुओ काम किया था. उनके कंपोज किए गए साउंडट्रैक्स तो सुपर हिट रहे यार, बिकॉज द एल्बम ऑफ दिस मूवी इज जस्ट अमेजिंग. लेकिन इस फिल्म के बाद प्रीतम दा ने अलग करियर स्टार्ट किया और जीत गांगुली अलग काम करने लग गए. बट मजे की बात तो ये हुई कि थैंक गॉड कि प्रीतम दा ने अपने करियर के पहले मेजर प्रोजेक्ट में किसी दूसरे गाने से इंस्पिरेशन नहीं ली. फिल्म तो ऑलरेडी किसी दूसरी स्टोरी से इंस्पायर्ड थी, एटलीस्ट गानों ने तो ये काम नहीं किया. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: चंदा

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: वो कर्ल्स जिनको कि आज भी केमिकल लगा लगा के धो दिया जाता है, 90s के दौर में ऐसे कर्ल्स हुआ करते थे जिनको हम कह सकते हैं दीज आर रॉ कर्ल्स।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आई क्लियरली कैन नॉट बिलीव कि आज के दौर की लड़कियां जो है उनको उठाकर अगर हम 90s में डाल दें और कहें कि तुम्हारे पास कोई केराटिन का ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्ट्रेटनर नहीं है, आपके पास ये जो कर्लर्स वर्लर्स हैं और जो जितने भी फैंसी चीजें आज हमारे पास हमारी वैनिटी में है अपने बालों को एकदम टिप टॉप रखने के लिए, वो नहीं है तो क्या हो यार दुनिया का। बिकॉज 90s का दौर वो दौर था जहां पर लुक्स एकदम रॉ हुआ करते थे। बालों को तो आज भी मुझे याद है कैसे रखा जाता था कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आई एम श्योर एक ब्रश मार दिया जाता होगा यार, एंड दैट्स अबाउट इट। हीरोइन रेडी है शॉट के लिए बॉस। और वो कर्ल्स जो बिल्कुल रॉ हुआ करते थे, बिल्कुल ड्राई हुआ करते थे, कहीं ऐसा नहीं लगता था कि उसके ऊपर जेल अप्लाई कर दिया गया या कुछ और अप्लाई कर दिया गया है। उन रॉ कर्ल्स के दीवाने सभी हुआ करते थे, माधुरी दीक्षित के कर्ल्स हो, जूही चावला के कर्ल्स हो या फिर पूजा भट्ट के कर्ल्स हो। बट धीरे धीरे करके वो कर्ल्स जो है वो स्ट्रेटन होते गए विद टाइम, जैसे जैसे हेयर प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होते गए वैसे वैसे वो कर्ल्स जो है वो गायब से होते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट आज के दौर में तो मुझे लड़कियां जो नॉर्मल चलती हुई सड़क पर नजर आती है ना, उनके भी कर्ल्स नहीं नजर आते हैं यार। And I feel really sad about it because I miss those curls, यार वो heavy curls जिससे बालों का volume क्या next level रखता था। I'm sure कोई ना कोई ऐसी लड़की जिसके पास वो curls है वो मुझे सुन रही होगी, तो मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगी यार कि ये curls नायाब है, इन्हें straighten मत करो, क्योंकि आजकल तो सभी के बाल straighten है। तुम्हारे बाल सबसे अलग है जिनमें curls है, और हम naturally straight बालों वालों से पूछो कि हमें curls कितने पसंद आते हैं। तड़पती हूँ मैं कि किसी तरीके से मेरे पास भी ये curls आ जाए यार। So yeah, be proud of your curls and please don't straighten them with all these chemical treatments. We love you the way you are and you should also love yourself the way you are, yaar. You tune in with me, Sara, aapki 90s ki yaadon ka pitara on Mirchi. It's hot.

0: Mirci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार। सारे दिमाग
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
3: क्या? कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो। कपड़े
2: नहीं
3: मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे।
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
2: कोई सिस्टम ही नहीं है, कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पगला।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
15: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
14: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
16: Vishal Mishra, live in New Jersey, Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Chalk and Duster,
2: यादों को चिट्ठी।
1: कभी तो तुम क्लासरूम चमकाया करते थे, तो कभी तुम टीचर का मूड ही चमका दिया करते थे। कहाँ चले गए यार वो दिन जब काले ब्लैकबोर्ड पर तुम्हारा जादू चला करता था। जब चौक ब्लैकबोर्ड से मिला करती थी ना, तो एक अलग ही म्यूजिक बना करता था। और जब डस्टर चौक का लिखा हुआ मिटारा होता था तो सुर बदल जाया करते थे, लेकिन म्यूजिक जरूर हुआ करता था दोनों की उस लैंग्वेज में। वो कोई सिंपल आवाज नहीं थी, बल्कि हमारी पढ़ाई की बैकग्राउंड म्यूजिक थी बॉस। हर मंडे को हमारी क्लास में चौक का एक नया डब्बा आया करता था नए लुक के साथ, और सैटरडे तक वो थक हार के डब्बा खाली हो जाया करता था। और डस्टर भाई साहब, तुम तो पूरे हफ्ते धूल में लतपत होकर ब्लैकबोर्ड को ही चमकाते रहते थे, जैसे कोई दोस्त हो जो हमेशा साथ निभाए चले जा रहा है, चाहे सिचुएशन कितनी भी धूल भरी क्यों ना हो। याद है जब टीचर्स गुस्से में आते थे और चौक इतनी जोर से बोर्ड पर मारते थे कि टक की आवाज क्लास की आखिरी बेंच तक सुनाई देती थी, और डस्टर का उड़ता हुआ कमबैक सीधे खिड़की के पास बैठे लड़कों के ऊपर। हालांकि फिर हम मासूमों को पता लगा कि यार इससे तो चोट भी लग सकती है, ये तो गलत है। बट भाई जब क्लास में तुम्हारा स्टॉक खत्म हो जाया करता था ना मिड वीक के अंदर ही, तो क्लास मॉनिटर को भेजा जाता था और वो एक नया डब्बा लाने के लिए न जाने कहाँ जाया करता था। फिर मैम उस डब्बे को क्लास की अलमारी में सेफली रख दिया करती थी। तुम्हें पता है, आज तक मुझे नहीं पता है कि क्लास मॉनिटर को तुम्हारे डब्बे के लिए कहाँ जाना पड़ता था, क्योंकि मैं तो कभी क्लास मॉनिटर बनी ही नहीं। कभी तुम पर हम अपने ख्वाब लिखा करते थे, अपनी ड्राइंग्स बनाया करते थे, लोगों को चढ़ाया करते थे, टीचर्स के कार्टून्स बनाया करते थे, और आजकल स्मार्ट बोर्ड पे उंगलियां चलती है बॉस। आज सब कुछ डिजिटल हो गया है, स्मार्ट बोर्ड, मार्कर, प्रोजेक्टर, ये सारी चीजें आ गई है दुनिया में। पर सच बताओ, वो मजा कहाँ यार जो तुम्हारे साथ था। चौक के पाउडर से भरे हुए हाथ और डस्टर से निकली धूल में लिपटा हुआ वो ज्ञान आज भी दिल को सुकून देता है। लेकिन अब तुम ना हमारी जोड़ी के एग्जाम्पल्स में काफी काम और याद आते हो, क्योंकि अब हम तुम्हारी मिसाल दिया करते फॉर अ हिट जोड़ी। जब किसी जोड़ी की केमिस्ट्री की बात करनी हो ना, तो जुबान पर आता है बिल्कुल चौक और डस्टर की जोड़ी है बॉस। देखा तुम्हारा इम्पैक्ट हम पर कितना था, इतना कि चौक तुम हमारे लिए सिर्फ धूल नहीं थी, और डस्टर तुम सिर्फ किए कराए पर फिरने वाले डस्टर नहीं थे। तुम्हारा रिश्ता उन स्कूल डेज से ही हमसे काफी गहरा था, है और हमेशा रहेगा। तुम्हारी पुरानी स्टूडेंट जो आज भी अगर कहीं किसी क्लासरूम में चली जाती है और ब्लैकबोर्ड देख लेती है ना, तो मुस्कुरा देती है। तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause it's hot.

0: प्राइस पे आएगी।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
4: पहले भी मैं तुमसे मिला।
5: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra. Vishal Mishra.
3: Jaitley of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
6: Suno, brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
7: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
6: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
7: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: उदित नारायण की आवाज में रंगीला मूवी से दिस गाना इज कैसेट के साइड बी का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: ये गाना कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन है प्यार की मोहब्बत की बात लेकिन इन अ टपोरी फॉर्मेट. एंड ऑफ कोर्स इस गाने में जो पिक्चराइजेशन है उसने टपोरी फॉर्मेट को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया है. बट ये जो गाना है ना इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि यहाँ ये पूछा जा रहा है कि क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है कोई तो बता दे इसका हल. ओ मेरे भाई इसका कोई हल नहीं है. मोहब्बत चीज ही ऐसी है कि परत दर परत आपको हल जो है वो अपने आप या तो मिल जाएंगे या हो सकता है कि आप हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहे इस चीज को लेकर. एंड दिस गाना इज अबाउट द कश्मकश जो एक बंदे के दिल में होती है. बंदा सोच रहा है कि यार रोज हम यही सोच रहा होता है कि आज हमको अगर वो कहीं मिल जाए ना तो ऐसा बोलेगा साला वैसा बोलेगा खुल्लम खुल्ला उस पे दिल का राज हम खोलेगा. लेकिन टपोरी फॉर्मेट में आगे की जो बात कही गई है ना वो टपोरी तो है लेकिन खूबसूरत बड़ी है कि वो सामने चमकती है सांस ही अटकती है और ये जुबान जाती है फिसल. तो क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल हाय कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई. ये यूजुअली वो सवाल है जो एक लड़का अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है कि कैसे बोलूं यार उसको कैसे अपने प्यार का इजहार करूं कैसे अपनी रातों की जो उड़ी हुई नींद है करार है उसको मैं काबू में कर पाऊं. नहीं कर सकते स्पेशली तब जब प्यार एक तरफा हो. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि प्यार एक तरफा है या दो तरफा. अच्छा चलो प्यार नहीं तो पसंद ही सही उसको प्यार में तब्दील कर सकते हैं लेकिन पसंद का पी भी होना चाहिए भले ही प्यार का पी ना हो. क्योंकि जिंदगी की बात करें ना बाबू मुशाए तो ये 90s की कोई फिल्म नहीं है कि हीरो को लड़की पसंद आई तो जाके बोल दिया कि आई लव यू और लड़की हाँ बोल देगी. ऐसा सिर्फ तब की फिल्मों में हुआ करता था. लड़की की भी हामी जरूरी है बॉस क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब लड़कों ने ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया है जब प्यार एक तरफा है और आपने नहीं पूछा है कि क्या मैं तुम्हें भी पसंद हूँ तो लड़कों ने मुंह की खाई है और फिर उनके दिल ने दी दुहाई है. तो इस सारे प्रोसीजर से बचने के लिए सबसे पहले ये कन्फर्म करो कि पर से प्यार ना सही लेकिन पर से पसंद है कि नहीं. चलो जी अब जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती भी जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause इट्स हॉट.

सत्ते पे सत्ता ये फिल्म जब आप देखते हैं ना, आपको समझ नहीं आता कि किसको ज्यादा पसंद किया जाए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें वो जो सातों के सातों भाई है ना, इतने मजेदार हैं, एक एक किरदार है वो अलग अलग। अभी मैंने लास्ट टाइम फिल्म देखी थी तो मुझे शक्ति कपूर पे बड़ा प्यार आ रहा था यार। वो जो उसमें मंगल का रोल करते हैं ना, जो बात करते करते थोड़ा अटकता है। और भी जो भाई का किरदार निभा रहे हैं जितने भी एक्टर्स, वो सारे किरदार इतने यूनिक है ना, सबको कोई ना कोई ऐसी स्पेशलिटी दी गई है। सत्ते पे सत्ता उन फिल्मों में से एक है, वो जहां भी मुझे देखने को मिले ना, मैं तो बैठ जाती हूँ। 1982 की वन ऑफ द हिट फिल्म्स, सुपर हिट मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज आपको पता है 1982 की टॉप 10 फिल्मों में ये आती ही नहीं है। कौन सी फिल्में आती हैं? एक तो डिस्को डांसर, विधाता, प्रेम रोग, खुद्दार, निकाह, अशांति, राजपूत, फर्ज और कानून, शक्ति, एंड हाउ टू फॉरगेट अमिताभ बच्चन साहब की ही नमक हलाल। तो इसका ये गाना सुन लेते हैं जिसमें सीख समझाइश दी जा रही है हमको। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे।
3: क्या हो गया
4: सर, मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है। मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया, क्या कर दिया आपने।
3: क्या हुआ क्या है
4: सर, एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
3: कब दिया था आपने।
4: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
3: क्या प्रॉब्लम क्या है।
4: चंद्रो फोन लेके आ,
3: डिस्प्ले आ रहा है।
4: डिस्प्ले आ रहा है, डिस्प्ले से क्या होता है यार।
3: फोन आ रहे हैं और ओके।
4: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
3: बेल बज रही है।
4: अरे बेल वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है। मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये।
3: अरे आपने लिया कहाँ से था।
4: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
3: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप।
4: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप।
3: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
4: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
3: थोड़ी ना
4: मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
3: गुब्बारे वाला फोन हमें बता रहे,
4: गुब्बारे वाला फोन यार। बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल यार, पता नहीं कैसे चला रहे सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
3: तो आप हमें फोन कर रहे हैं वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराई,
4: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे। तो ये पहले नहीं बोल सकते थे,
3: फोन थोड़ी ना होते
4: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
3: फोन मत करिए,
4: यहाँ फोन मत करिए यार।
5: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई।
3: हेलो
5: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
3: अरे सर काम का टाइम है, आप फालतू
5: में। सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
3: कुकड़ू को।
5: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
10: पहले भी मैं तुमसे
11: मिला। Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
12: Vishal Mishra.
13: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
14: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
15: to aaiye Fashion Queen. Yahan milega Royal Bridal Lehenga Collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
14: Shaadi shopping ka complete destination, Fashion Queen.
15: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
16: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
17: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
16: Renew?
17: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
16: What better way to celebrate than with something timeless?
17: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
18: अब मिर्ची खा।
4: Radio Mirchi, it's hot.
0: पुरानी जीन्स with Charu, only on.

0: जहां से।
1: शर्मिला टैगोर जब स्कूल में स्टूडेंट थी तो कैसी थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: वेरी स्टूडियस, और जो हमारे कैप्टन जो कहते थे, आई वॉज अ स्लेव ऑफ माई स्कूल कैप्टन, अगर मुझे कुछ भी बोले आई वॉज द फर्स्ट वन टू गो।
1: वाह, सुंदर भी और स्टूडियस भी। वैसे ये तो आपको पता है ना कि शर्मिला टैगोर बंगाल के प्रेस्टिजियस इलस्ट्रियस गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से बिलोंग करती हैं। शर्मिला का ये नाम शर्मिला किसने रखा, एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था। ऑल्सो इनका निकनेम रिंकू था।
2: बंगाल में सबका डाक नाम होता है, जिसको हम डाक नाम बोलते हैं। डाक नाम जो एक घर का नाम होता है, रिंकू और शर्मिला वॉज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर When he came back from Czechoslovakia, वहाँ का नाम था योर्मिला। उस वापस आने के बाद उन्होंने एक किताब लिखा दुई बोन बोल के, तो उसमें देयर वाज शर्मिला एंड उर्मिला। योर्मिला का उनको इन्फ्लुएंस होके वो शर्मिला।
1: चलिए, शर्मिला ने भी टैगोर खानदान का नाम अलग ही तरह से रोशन किया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची योगा क्लास, मिर्ची योगा क्लास।
2: परेशानी? जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे। पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें। वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
3: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
7: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
6: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
8: Inefficient,
9: very complex,
10: clumsy or
11: confusion ही confusion.
12: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: Listener MA, back to back gana sunega.
16: Back to back gana sunega.
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
17: It's 1:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans. Charu ke saath. सिर्फ मिर्ची पर।

1969-70 में एक अमेरिकन फिल्म का गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके काफी सारे वर्जन्स थे, काफी सारे सिंगर्स ने इसे गाया था। एक वर्जन मैं आपको सुनाती हूँ जो वहाँ के तब के फेमस सिंगर एंडी विलियम्स ने गाया था। गाने के वर्ड्स हैं, रेन ड्रॉप्स कीप फॉलिंग ऑन माय हेड। सुनिए जरा। वर्ड्स हैं, रेन ड्रॉप्स कीप फॉलिंग ऑन माय हेड। सुनिए जरा।

0: have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
1: Are you worried about accessing healthcare? Did you know that New York offers affordable health insurance for individuals, families and small businesses? Do not worry about the application. South Asian Council for Social Services enrollment specialists will help you with the process. Our staff speaks over 20 languages and we will help you get affordable healthcare. Call the South Asian Council for Social Services at 718-321-7929 or visit the SACSS office in person at 14302 45th Avenue in Flushing, New York. For more information, visit www.sacssny.org.
0: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़लिन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
7: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

वो फिल्म बड़ी स्पेशल होती है जो हमने सिनेमा हॉल में पहली बार देखी होती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो सिनेमा हॉल, वो शहर, वो वक्त, कितनी खूबसूरत यादें जुड़ी होती है ना। वैसे आपको पता है शाहरुख खान ने पहली कौन सी फिल्म सिनेमा हॉल में देखी थी? भाई तब वो 8 साल के थे और स्कूल में ना उनकी हिंदी बड़ी कमजोर थी, तो उनकी मम्मा ने उनको बोला कि भाई हिंदी के टेस्ट में तुम 10/10 लेकर आओ, तब तुमको फिल्म दिखाने ले जाएंगे। तो शाहरुख ने ऐसे वैसे जैसे भी करके, थोड़ी सी चीटिंग भी करके, हिंदी के टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 10/10 लेकर आए। और तब उनके पेरेंट्स उनको दिल्ली के विवेक सिनेमा हॉल में 1973 की जोशीला फिल्म दिखाने ले गए। ये यश चोपड़ा साहब की फिल्म थी, उसी का गाना सुन लेते हैं। गाना थोड़ा सैड है लेकिन याद कितनी स्पेशल है। आपकी भी ऐसी कोई याद होगी जब आपने पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखी थी, कौन सी देखी थी, कौन सा थिएटर था वो, कौन से शहर में, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

आपको पता है सिंगर शब्बीर कुमार मोहम्मद रफी साहब के बहुत बड़े फैन थे। वेल, उनकी आवाज से भी समझ में आता है कि वो रफी साहब के कितने बड़े मुरीद थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और शब्बीर कुमार साहब ना इस तरह के इवेंट्स में परफॉर्म करते थे, एक शाम रफी के नाम या मोहम्मद रफी सॉन्ग्स नाइट। और इसी तरह के किसी इवेंट में उनको नोटिस किया मनमोहन देसाई साहब ने। भाई उस टाइम पे लोग मोहम्मद रफी साहब जैसी आवाज ढूंढ रहे थे, बिकॉज रफी साहब हैड पास्ड अवे इन 1980। और तब देसाई साहब ने इनका नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को रेकमेंड किया और कुली में अमिताभ बच्चन साहब की आवाज ये बन गए। उसी साल 1983 में इनकी बेताब फिल्म भी आई जिसमें सनी देओल की आवाज ये बन गए। उसी फिल्म का ये गाना सुनते हैं, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, साथ में लता मंगेशकर की आवाज भी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: मिर्ची
4: नवीद
3: बोल रहा हूँ।
4: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू उसके लिए क्या करना पड़ेगा
3: वो आपको मुझे बताना होगा।
4: तो मैं अभी बता दूँ।
3: एक सेकेंड ये फॉर्म भर देते हैं। क्या नाम है आपका?
4: संजना।
3: संजना किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
4: अपने हस्बैंड का।
3: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
4: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा।
3: अच्छा संजना मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
4: भड़क भी जाते हैं।
3: अरे बाप रे। तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
4: अब्यूजिंग वे में। थोड़ा
3: अब्यूजिंग वे में जैसे कि कैसे?
4: आप मुझे शुरू कीजिए फिर मैं बताऊं।
3: ओके चलिए। हेलो सर मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ फलाना बैंक से। सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
4: नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है।
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं आप मुझे बता दीजिए। सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं। और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है रेडियो मिर्ची पे।
4: मैंने अपना बनवाने के लिए फोन नहीं किया था।
3: हम तो किसी का ही बना देते हैं, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे, फिलहाल आपका बन गया। मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार कुकड़ू कू। थैंक यू।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Vishal Mishra live in New Jersey, Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: શું તમે હેલ્થકેર મેળવવા વિશે ચિંતિત છો? શું તમને ખબર છે કે ન્યૂયોર્ક વ્યક્તિઓ, પરિવારો અને નાના બિઝનેસ માટે ઓછા ભાવમાં હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ આપે છે? એપ્લિકેશન ની ચિંતા ન કરો, SACSS એનરોલમેન્ટ સ્પેશિયલિસ્ટ તમને આ પ્રક્રિયામાં મદદ કરશે। અમારો સ્ટાફ વી કરતા વધુ ભાષા બોલે છે અને અમે તમને હેલ્થ કેર મેળવવામાં મદદ કરીશું। સાઉથ એશિયન કાઉન્સિલ ફોર સોશિયલ સર્વિસિસ ને કોલ કરો 718-321-7929 અથવા SACSS ઓફિસમાં રૂબરૂ મુલાકાત લો 14302 45th એવન્યુ ફ્લશિંગ ન્યૂયોર્ક વરહુ માહિતી માટે વિઝિટ કરો www.sacssny.org।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: Purani jeans, charu ke saath, sirf mirchi par.

कपूर खानदान के चश्मो चिराग ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज का ये गाना हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और कपूर खानदान के ही एक चश्मो चिराग थे शम्मी कपूर साहब, जिन पर न जाने कितने ब्रिलियंट अमेजिंग माइंड ब्लोइंग गाने पिक्चराइज हुए हैं, लेकिन उनका मन पसंद ऐसे दिल को छूने वाला फेवरेट गाना पता है कौन सा था? उनका खुद का। 2011 में जब उनकी डेथ हुई, उससे पहले तक जो फोन वो इस्तेमाल कर रहे थे उसमें उनकी रिंग टोन थी ये गाना। कौन सा गाना? शंकर जयकिशन की कॉम्पोजिशन, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी की आवाज, पगला कहीं का फिल्म का ये गाना। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस्य बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Oh no!
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: It's 2:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
9: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
10: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
9: Renew?
10: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
9: What better way to celebrate than with something timeless?
10: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
14: पुरानी जीन्स विद चारू।

प्यार से फिल्म इंडस्ट्री में कर्ता कहा जाता था। कर्ता का मतलब कार्य करने वाला या क्रिएटर। अच्छा, 1944 में जब एसडी बर्मन कलकत्ता से बॉम्बे आए थे ना, तो बहुत बेजार हो गए थे उस शहर से, फास्ट पेस्ड लाइफ, और उनको लगा कि बॉम्बे बहुत मटेरियलिस्टिक है, उनके स्वभाव का नहीं है। उन्होंने मन बना लिया था कि भाई वापस चले जाएंगे कलकत्ता, लेकिन फिर जैसे तैसे वो रुक गए। अच्छा वह रुक गए, नहीं तो उनकी कहानी, उनका जीवन वैसे आगे नहीं बढ़ता जैसे बढ़ा। और फिर हमें आरडी बर्मन भी मिले, जिनका कंपोज किया हुआ अगेन आइकॉनिक गाना हम सुनेंगे यहाँ पर, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
7: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on.

1975 में ना एक फिल्म आई थी काला सोना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसका म्यूजिक कंपोज किया था आर डी बर्मन ने, और इसका जो टाइटल म्यूजिक था ना, इसका थीम म्यूजिक, वो जो आर डी बर्मन ने कंपोज किया था ना, वो आप थोड़ा सा सुनिए जरा।

सुनी सुनी सी धुन है ना। वेल, इस धुन को इन्होंने दोबारा इस्तेमाल किया था 1977 में इस गाने के लिए जो हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ, खुद आर डी बर्मन की आवाज, फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 3 p.m. Mirchi Time Check, brought to you by RK Jewels. RK Jewels, jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels, best quality, best price.
2: इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
4: ओके देन, मिर्ची सुन रहे हैं आप. बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, एक री एंट्री है. हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है, सम स्पेशल गाना स्पॉटलाइट्स, ऑल दिस एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10. गाने का नाम है उड़ी उड़ी बाय अनीश सरकार. हृदय, इट्स अ नई नवेली एंट्री. उड़ी उड़ी ने डेब्यू किया है ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद मिट्टर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिट्टर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स. गाने का नाम है शीशा. 11 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार रहा है. पिछले हफ्ते से एक्चुअली 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: नंबर 10.

0: स्वरा वर्मा मेटर और की आवाज, मेटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, दैट मींस फ्यूजन एंड कोलैबोरेशन।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अभी करो फॉलो, करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। अक्सर जब हम कोक स्टूडियो के बारे में बात करते हैं तो उसके ओवरऑल म्यूजिक इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है। कोई मदारी बोलेगा,
2: मदारी मदारी मदारी मदारी मेरा तू, मैं जम्मूरा रे जम्मूरा।
0: तो किसी के लिए वो होगा चौधरी,
2: मर बिगड़े में जागी दो कणी रे, चंदा में थारी चांदनी, मन दामन में पाती खुशी रे, जुम जुम जुम।
0: या फिर द गुजराती एंथम खलासी, बट आई ट्रूली थिंक दैट कोक स्टूडियो का इम्पैक्ट किसी एक गाने तक लिमिटेड नहीं है। दिस इज वन प्लेटफॉर्म जो हमें याद दिलाता है दैट इंडिया का म्यूजिक सीन कितना बड़ा है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, फोक ट्रेडिशन बदल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बदल जाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम म्यूजिक में हमेशा सबकी जगह नहीं बनी, और वो कोक स्टूडियो ने किया। उसने फोक आर्टिस्ट को सिर्फ फीचर नहीं किया, उनको सेंटर स्टेज दिया है। चौधरी में राजस्थान की मिट्टी है, मदारी में फोक और रॉक एक साथ है। That's what we call the perfect fusion. But ये perfect fusion जो है सिर्फ sounds and genres तक limited नहीं है, right? यहाँ पे generations मिल रही हैं, music के different regions मिलते हैं, independent artists और folk musicians एक साथ मिलते हैं, जो गाने वो produce करते हैं उसमें traditional roots होते हैं। दूसरी तरफ contemporary production, uber cool beats की ऐसा लगता है ये गाना कहीं सुना भी है और नया भी है। And countdown का जो अगले वाला गाना है वो exactly ऐसी ही collaboration है। एक तरफ आदित्य रिखारी जैसे pop star, दूसरी तरफ कुटले खां जैसे राजस्थानी आर्टिस्ट, रैवेटोर का म्यूजिक, ऊबर कूल प्रोडक्शन, गाने का नाम है ए अजनबी। अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग ए अजनबी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, sakka bana. Kya bana? Murga, murga. Nabeed wala murga. Mirchi murga.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी।
3: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए, एक से एक बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस लगाया नहीं।
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब
3: नहीं दी थी
2: मैं
3: कल को। अरे लेंस
2: ऐसे
3: पूरे कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है अंदर से, सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: सर शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, सुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
2: कहाँ होता है बताइए।
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
9: पहले भी मैं तुमसे मिला।
10: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
11: Vishal Mishra.
8: Jetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
12: क्या आप हेल्थ केयर हासिल करने को लेकर परेशान हैं? क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क लोग परिवारों और छोटे बिजनेसेस के लिए कम दाम में हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करता है? एप्लीकेशन की चिंता ना कीजिए, SACSS एनरोलमेंट स्पेशलिस्ट्स आपको पूरी प्रक्रिया में मदद करेंगे। हमारे स्टाफ मेंबर्स 20 से अधिक भाषाएं बोलते हैं और आपको सस्ती हेल्थ केयर दिलाने में मदद करेंगे। साउथ एशियन काउंसिल फॉर सोशल सर्विसेज को कॉल करें 718-321-7929 या SACSS ऑफिस विजिट करें 143-02 45th Ave, Flushing, New York. अधिक जानकारी के लिए विजिट www.sacssny.org.
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: हिमेश रेशमिया की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, रजत नागपाल, राणा सोतल का गाना, गाने का नाम है शराब। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है, तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। शराब वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। वी वर टॉकिंग अबाउट कोक स्टूडियो भारत। कैसे? कोक स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटेम्प्रेरी प्रोडक्शन, फोक आर्टिस्ट, ट्रेडिशनल रूट्स को एक फ्यूजन की तरह प्रेजेंट करता है। हर किसी का अपना फेवरेट कोक स्टूडियो गाना है, बट टुडे वी वांट टू गिव स्पॉटलाइट टू पहली बार ये गाना सुन के एकदम पावरफुल फ्यूजन ट्रैक लगता है, राइट? विशाल ददलानी की रॉ एनर्जी, सोनू कक्कड़ के बहुत इंप्रेसिव वोकल्स हैं इस गाने में, क्लिंटन सेरेयो की अरेंजमेंट, फोक रॉक सूफी इन्फ्लुएंसेस हैं, विच इज ऑल ग्रेट, राइट? बट इस गाने की जो असली ब्यूटी है, जो असली पावर है, उस गाने के मीनिंग में है। जो मेन लाइन है इस गाने की, इट सेज मदारी मेरा तू, मैं जमूरा तेरा। मदारी मतलब वो स्ट्रीट परफॉर्मर जो खेल दिखाता है, जमूरा उसका साथी जो उसके इशारों पर चलता है, और ये जिंदगी एक सर्कस ही तो है जहां हम बस नाच रहे हैं। ये लिरिक्स मनोज यादव ने लिखे हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल मेटाफर। इंसान जमूरा है और जिंदगी इश्क या शायद ऊपर वाला मदारी। हमको लगता है कि हम कंट्रोल में है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब किसी ना किसी इनविजिबल फोर्स के साथ डांस कर रहे होते हैं, ऐसा मनोज यादव कह रहे हैं इस गाने के थ्रू। विद द कॉम्बिनेशन, द पावर, द एनर्जी, द वोकल्स, इट्स टॉप नॉच, 10/10 एक्सपीरियंस। इस गाने को आप सिर्फ सुनते नहीं है, पता नहीं, मेरे को लगता है ये गाना ऐसे लंग्स में उतर जाता है, बिकॉज इतनी एनर्जी दे जाता है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इतने सालों बाद भी अगर आप म्यूजिक लवर से उनका फेवरेट कोक स्टूडियो इंडिया ट्रैक पूछते हो, मदारी का नाम ऑलमोस्ट हर कोई बोलता है। विशाल ददलानी, सोनू कक्कड़ की आवाज, क्लिंटन सेरेयो की कॉम्पोजिशन, मनोज यादव के लिरिक्स, दिस इज मदारी, अ कोक स्टूडियो थ्रोबैक, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची योगा क्लास मिर्ची योगा क्लास
2: आहा बच्चा आज का आसन है यस बॉस आसन। इसमें आपको बॉस के हर काम को हाँ करने के लिए अपनी गर्दन और मुंह ऊपर नीचे करनी होती है। ट्राई करो ऊपर नीचे। वेरी गुड। इस यस बॉस आसन से आपकी चापलूसी करने की क्षमता बनी रहती है और ये आसन करने से मसल ग्रोथ तो अच्छी होती है और करियर ग्रोथ भी टनाटन हो जाती है।
3: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
4: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2 इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
9: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय Gurudev.
10: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
11: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
10: Renew?
11: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with 0 deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
10: What better way to celebrate than with something timeless?
11: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
12: अब मिर्ची खा।
14: Radio Mirchi, it's hot.
8: It's 3:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
15: नंबर 4।

0: अनूप जैन की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, इट्स अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है अर्ज किया है। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके अर्ज किया है इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। आई नो दैट हम सबके कंफर्ट सॉन्ग होते हैं, पर हर वो गाना जो हमें अच्छा लगा हमने कभी ना कभी तो पहली बार सुना था ना। इट्स टाइम टू पुट स्पॉट लाइट ऑन अ सॉन्ग लाइक दैट।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indi Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Instagram par jao, mere saath connect karo. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna ho, koi artist recommend karna ho, bindaas aake hit me up. Har artist, har insaan, main, aap, kisi na kisi dream ko chase kar rahe hain. और हम उसकी जर्नी में हैं अभी। एंड ऑफन जब हम इस रास्ते पर चल रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि ना तो हम वापस जा सकते हैं, ना अभी तक वहां तक पहुंचे हैं जहां जाना था। एक तरह से हम सब एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। आज का गाना स्पॉटलाइट एक ऐसा गाना है जो इसी फीलिंग को हाईलाइट करता है। गाने का नाम है लॉन्ग।

0: गाने में तीन आर्टिस्ट हैं, एमसी स्क्वायर, राधिका भिंडे एंड विकेट सनी। एमसी स्क्वायर की जर्नी खुद इस गाने की थीम से कनेक्ट करती है। हरियाणा के पलवल से बिलोंग करते हैं वो, उन्होंने हरियाणवी हिप हॉप को नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना दिया। कहानी वो बता रहे हैं लेकिन लग रहा है हमारे बारे में। यू नो वो फीलिंग जब आपका सपना भी पूरा नहीं हुआ है, वो फीलिंग जब आप इतना आगे आ चुके हो कि वापस जाना ऑप्शन नहीं लगता, लेकिन इतना आगे भी नहीं आए हो कि अभी सेलिब्रेट कर सको। कोई अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में सक्सेस ढूंढ रहा है, कोई अपने शहर में ही बेटर लाइफ ढूंढ रहा है। ऑल ऑफ अस आर चेजिंग दैट ड्रीम एंड सम ऑफ अस आर लॉन्ग वे फ्रॉम होम एंड दिस सॉन्ग एग्जैक्टली टॉक्स अबाउट दैट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बी ओपन टू इट, लिरिक्स को ध्यान से सुनना। एमसी स्क्वायर, राधिका भिडे, विकेट सनी का गाना दिस इज लॉन्ग वे फ्रॉम होम ऑन आर गाना स्पॉटलाइट ऑफ द वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका, एंजॉय।
1: किसी के पीछे नहीं चलना था तो अपने ही रास्ते बना लिए, सस्ती ये दुनिया में आंखों ने ख्वाब मेरी थोड़े महंगे सजा लिए, आंखों पे चश्मे चढ़ा लिए कि सबको दिखे ये चेहरा हंसता हुआ, रुकी नहीं सांसें तो चल पड़ा फिर और कंधों पे बस्ते उठा लिए। दुनिया घुमा रही है मैं भी कमाल हूँ, देखो ना घूमते जा रहा हूँ कि टूटे ना हिम्मत, इसलिए तस्वीर को माँ की मैं चूमते जा रहा हूँ। मिली ना मंजिल तो चल पड़ा मंदिर को, सोचा भगवान मिलेंगे जो पहले से अंदर है मुझ में बसा हुआ, मैं उसको ही ढूंढते जा रहा हूँ। है घर का वो छोटा जो कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी लेके चला है, जब बैठा वो छांव में उतारे जूते तब जाना वो कितना चला है। वो तो बस जानता ये कि करो भला तो बस होता भला, इतिहास गवाह है जो बांट के खाता उसे ऊपर वाले से कम ही मिला है। घर वाले याद भी आते हैं, घर लौटो ये बाप नहीं चाहते हैं, जब पेट तो भूखा तो बिस्तर पे नींद तो आती पर ख्वाब नहीं आते हैं। चेहरे पे धूल लगी जिनके आईने घर के वो साफ दिखाते हैं, पेट वो भरते हैं भूख से ज्यादा जो अक्सर ही मांग के खाते हैं। टूटा है दिल, टूटा हूँ मैं पर फिर भी सब रोज संभाला है, कुछ ना कुछ कम ही पड़ा है जब से जिंदगी में होश संभाला है। लिखी है ऊपर वाले ने जिंदगी है या मौत की सजा, मौत ही होगी शायद क्योंकि कलम को अपनी वो तोड़ने वाला है।

रत जगे सर वाले में, एक डिबिया की लो जड़ती दिखे आड़े में, वे धरी पाम की कड़ी काट के ताड़े में, फिर फंस गया बचपन चका चौंध के जाड़े में।

हार्ड-हिटिंग लिरिक्स. गाने का नाम है लॉन्ग वे फ्रॉम होम बाय एमसी स्क्वायर, राधिका बिडे, विकेट, सनी. आई लव दिस अबाउट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड उनके म्यूजिक का सीन, दैट वो ना इन बिटवीन वाली फीलिंग्स को भी हाईलाइट करते हैं. हमेशा अपने गानों में कोई आंसर देने की कोशिश नहीं करते, कभी कभी क्वेश्चन को चेस कर रहे होते हैं एंड हम सब उस फीलिंग में अटके होते हैं. गाने का नाम था लॉन्ग वे फ्रॉम होम, याद कर लीजिए, अपने गाना ऐप पे एड कर लीजिए. नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. इट्स अ री एंट्री. संजू राठौर, द मैन, यू आर द लेजेंड. उनका हर गाना मेक्स अस वांट टू ग्रूव. इस बार गाने का नाम है बैंगल्स. आपके प्यार की वजह से इस गाने ने वापस एंट्री मारी है ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इन द टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। पॉप म्यूजिक इज ऑल अबाउट हाउ इट मेक्स अस फील। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हम सुनते हैं तो वो नए नहीं होते पर पुराने भी नहीं लगते, तभी हम उन्हें क्लासिक्स बुलाते हैं। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

0: Step a little loving good. Let me take your heart in another world. Give it to me now, give it to me now. Let me dig, dig that body.
1: I swear, ये गाना सुनके स्कूल की छुट्टियाँ याद आती हैं. वो टाइम याद आ जाता है जब हम गाने सुनते भी थे, देखते भी थे और कॉपी भी करते थे. गणेश हेगड़े की आवाज में दैट वॉज मैं दीवाना ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. 90s एंड 2000s का वो आइकॉनिक इंडी पॉप सॉन्ग दैट यू स्टिल थिंक इज फैबुलस हमसे आके शेयर करो. अशकाई और मैं आपके रिकमेंडेशंस को बहुत सीरियसली लेते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. इट्स टाइम फॉर द टॉप टू सॉन्ग्स ऑफ द वीक. There's been slight movement. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना बैरन 11 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद करण औजला 21 वंस अगेन 2 पोजिशन ऊपर जंप करके दे हैव सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट. 28 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार है. बॉयफ्रेंड इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिली।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab, mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका वेंसडे की इस खूबसूरत शाम में। वैसे वेंसडे ना एक ऐसा दिन होता है जो यार ज्यादा बोलता नहीं पर सब कुछ समझ जाता है। मतलब मंडे का ड्रामा भी ये देख चुका होता है, फ्राइडे के प्लान भी ये जान लेता है, बस बीच में बैठकर ना हमारे सारे प्लान्स को जज कर रहा होता है कि अच्छा बड़े बड़े वादे किए तुमने वीकेंड के, चलो देखते हैं कर भी पाओगे या नहीं। वैसे आज का दिन ना थोड़ा कंपोज्ड, थोड़ा स्मग जरूर लगता है, तो यार समझ जाओ वेंसडे अपना काम कर रहा है। आप भी बताओ दोस्तों, आज आप थोड़ी कंपोज थे या कंपोज रहने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि मुझसे पूछो तो यार मैं बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड नहीं थी, लेकिन जब कभी भी शाम को आपके लिए धमाकेदार गाना बजाने का मौका मिलता है तब यार ये पूरी कायनात सारा कंपोजर मेरे लिए लेकर आती है। तो चलिए वही करते हैं, आपके लिए बजाते हैं ये अगला धमाकेदार गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La vieva la murga. Milci, murga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार, आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया है, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्रो फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार,
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं आज तक। इधर रख, ये क्या है यार ये?
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: थोड़ी ना
3: मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता रहे,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराई,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए
3: यहाँ, फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर, काम का टाइम है, आप फालतू
4: हैं। सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू को।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
9: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
10: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
9: Renew?
10: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
9: What better way to celebrate than with something timeless?
10: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islip, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
12: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
13: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155.
14: Bombay Express and Vaishnav Caterers, the finest indoor and outdoor catering service in USA. Live cooking on premises for engagements, marriage, baby shower, birthday parties, and adult daycare. We make fresh farsan and sweets in USA. Also providing daily tiffin services with delivery in New Jersey and New York. Call Bombay Express and Vaishnav Caterers today at 732-986-6241. Or visit 2849 Woodbridge Avenue, Edison, New Jersey.
15: Sham Shada, let's do my donkey, have a funky time.
16: दोस्तों, कुछ लव सॉन्ग सुनते ही लगता है कि ये गाना लिखा नहीं गया है, किसी ने ना बस दिल की बात रिकॉर्ड कर दी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और न्यू जर्सी के शाम में अगर कोई गाना प्यार की सिंप्लिसिटी को कैप्चर करता है ना, तो वो है कैसे हुआ फ्रॉम द एल्बम कबीर सिंह। और यार कैसे हुआ सुनते वक्त ना मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इसके जो कंपोजर है विशाल मिश्रा, उनको शायद द ग्रैंड रोमांस से ज्यादा छोटी छोटी फीलिंग्स पसंद आती होंगी, क्योंकि इस गाने में ना ज्यादा ड्रामेटिक डिक्लेरेशंस हैं, ना ओवर द टॉप अरेंजमेंट्स हैं, बस एक सिंपल मेलोडी है जो यार सीधा दिल तक पहुंचती है। क्योंकि विशाल मिश्रा ने इस गाने को कंपोज भी किया है, लिखा भी है और खुद गाया भी है, और शायद इसीलिए ये गाना इतना ऑर्गेनिक लगता है। जैसे कबीर सिंह के इंटेंस वर्ल्ड में ये ट्रैक ना एक सॉफ्ट सी हार्ट बीट की तरह काम करता है। और कभी कभी ना सिंप्लिसिटी सबसे मुश्किल चीज होती है, और ये वो गाना है जो उसका एब्सोल्यूट प्रूफ है। क्योंकि यार विशाल मिश्रा की मेलोडीज में ना एक खास बात जरूर होती है, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। पहली बार सुनो तो लगता है कि जैसे गाना ना पहले से ही दिल में था, और शायद इसीलिए कैसे हुआ आज भी लोग गाते हैं, चाहे उन्हें गाना सीखा है या नहीं सीखा है, लेकिन दिल से गुनगुनाते जरूर है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपकी लाइफ का वो कैसे हुआ मोमेंट क्या था जब प्यार ने बिना नॉक किए एंट्री मार दी थी, और क्या तब ये गाना बैकग्राउंड में चला था। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHR। और फिलहाल सुनते हैं विशाल मिश्रा की कंपोजिशन कैसे हुआ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: परेशानी, जिम मेंबरशिप ले ली है, जा नहीं पा रहे, पुराने कपड़ों में आ नहीं पा रहे। एक काम करें, उसके बाद में एक और काम करें, वो दोनों खत्म हो जाए तो एक काम करें, फिर से एक काम करें, खूब सारे काम करें, 10 काम करें। करत करत अभ्यास ते शरीर से जाए सुजान। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
1: सेलिब्रेट योगा विद अस ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
12: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
13: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Sharda. Let's do not donkey have a funky time.
2: दोस्तों, प्यार का ना सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है? पागलपन. और वो भी वो वाला पागलपन जिसका कोई इलाज नहीं होता. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज बात उस गाने की हो रही है जो याद दिलाता है कि प्यार में ना थोड़ा पागल होना अलाउड है. सैयारा का गाना तुम हो तो. क्योंकि इस गाने को सुनते वक्त लगता है कि जैसे दुनिया का सारा लॉजिक एक तरफ और दिल एक तरफ. और इसे गाया और कंपोज किया गया है विशाल मिश्रा ने, जिनके गाने की ना एक खास बात होती है कि वो प्यार को परफेक्ट नहीं दिखाते, वो उसका पागलपन दिखा देते. किसी का मैसेज बार बार पढ़ना, बिना वजह स्माइल करना, हर गाने में एक ही चेहरा दिखाना, यार ये सब वही स्वीट मैडनेस है जो इस मेलेडी में महसूस होती है जब भी हम ये गाना सुनते हैं. और विशाल मिश्रा की सॉफ्ट वोकल्स और कंपोजिशन गाने की फीलिंग को इतना गहरा कर देती है ना कि लिसनर खुद अपनी कहानी सोचने लगता है. और शायद इसीलिए उनके रोमांटिक सॉन्ग्स इतने ज्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें प्यार कम और उसका पागलपन ज्यादा सुनाई देता है. तो चलिए आज कन्फेशन करते हैं, प्यार में आपने सबसे पागल चीज क्या की थी? लॉन्ग ड्राइव, लेट नाइट कॉल्स, या फिर किसी का लास्ट सीन चुप चुप के देखना? टेल मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI. और सुनते हैं विशाल मिश्रा ने गाया हुआ पागलपन वाला ये गाना, तुम हो तो, फ्रॉम सैयारा, राइट हियर ऑन मिर्ची. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants, and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।

दोस्तों, क्या कभी किसी गाने ने आपको आपकी ही कहानी याद दिलाई है? वो पहला प्यार, वो रात भर चलने वाली बातें, वो एक नाम जो आज भी किसी गाने के साथ याद आ ही जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बात हो रही है एक ऐसे कंपोजर की जिनका हर गाना हमें अपनी कहानी जैसा लगता है। अ वॉइस दैट गेव अस कैसे हुआ, पहले भी मैं तुम हो तो, जिन गानों को ना हमने सिर्फ सुना नहीं है बल्कि महसूस किया है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आ रहा है विशाल मिश्रा पागलपन टूर, ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC। और नाम ही सब कुछ कह देता है, पागलपन यानी वही पागलपन जो प्यार में होता है, वही पागलपन जो किसी याद को गाने के साथ जोड़ देता है, और वही पागलपन जो अटलांटिक सिटी में हजारों लोगों को एक साथ एक ही सुर में लाने वाला है। तो

डेट नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं 26 जून शुक्रवार की शाम को हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना अटलांटिक सिटी में। और आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो फ्रॉम ticketmaster.com या फिर saiusa.com। और हमेशा की तरह मिर्ची लिसनर्स के लिए एक खास कॉन्टेस्ट, आपको बताना है कि विशाल मिश्रा का कंपोज्ड गाना कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, कौन से मूवी का है। डीएम मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो एट 9033647244 टू विन फ्री कॉन्सर्ट टिकट्स। एंड रिमेंबर माई फ्रेंड्स, इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई USA INC प्रेजेंटेशन, सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ब्लॉक बस्टर इवनिंग विद विशाल मिश्रा पागलपन टूर। एक शाम जहां गाने सिर्फ परफॉर्म नहीं होंगे, वो आपको आपकी खुद की कहानी याद दिलाएंगे। तो जल्दी से अपने टिकट बुक कर लीजिए और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऑफिस एक ऐसी जगह होती है ना, जहां काम से ज्यादा इमोशंस मैनेज करने पड़ते हैं। कभी किसी और की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, कभी किसी और का डेडलाइन, और कभी कभी तो किसी और का एटीट्यूड भी। और फिर आता है वो मोमेंट जो हर कॉरपोरेट एम्प्लॉय ने कम से कम एक बार अपनी लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। यार, आपने एक आइडिया दिया, रिसर्च की, प्रेजेंटेशन बनाई, और एंड मीटिंग में वो आइडिया किसी और के मुंह से निकल जाता है और सब बोलते हैं वाओ, ब्रिलियंट। बस दोस्तों, इसी मोमेंट के लिए आज का मिर्ची योगा लेसन है द क्रेडिट छोड़ दो आसना। देखिए दोस्तों, वैसे तो योगा काफी सारे लोग सिखाते हैं, लेकिन ऐसी कोई आसना नहीं सिखाता है जो हमें रियल लाइफ में, ऑफिस में यूजफुल हो। तो चलिए, आज का मिर्ची योगा लेसन द क्रेडिट छोड़ दो आसना में सबसे पहले सीधा बैठ जाए, कंधे रिलैक्स रखिए, दिल में जो बहुत तड़कती फड़कती आग लगी है उसे चेहरे तक मत आने दीजिए। अब सामने देखिए, स्माइल करिए और धीरे से बोलिए, ग्रेट पॉइंट, बहुत बढ़िया। या फिर अगर एक्स्ट्रा जाके बोलना है तो ये भी बोल सकते हो कि वाह, क्या प्रेजेंटेशन है। जैसे शाहरुख के ओम शांति ओम मूवी ने एक जो साइड एक्टर था उसने बोला था, वाह क्या एक्टिंग है, बिल्कुल उसी तरह आप बोल सकते हो, वाह क्या प्रेजेंटेशन है। आप आसना में जब आ चुके हैं, अब पोज को मीटिंग ए के एंड तक आपको होल्ड करना है, और ध्यान रखिए आंखें रोल नहीं करनी है, लैपटॉप जोर से बंद नहीं करना है, और रेजिग्नेशन ड्राफ्ट नहीं खोलना है। एडवांस लेवल स्टूडेंट्स घर जाके दोस्तों को कॉल करके पूरी कहानी सुना सकते हैं। तो आज का यही तक था ऑफिस योगा लेसन्स, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो दोस्तों कि आपने आखिरी बार ये आसना कब परफॉर्म की थी। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और ऐसे ही मिर्ची योगा लेसन्स के लिए बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, Puscabana, Sacabana. Rambana. Burga, Burga. La Virpa, la Burga. Mirchi, Burga.
1: Mirchi.
2: It's Navid.
1: बोल रहा हूँ.
2: अगर किसी का वो जो बनाते हैं आप उल्लू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: वो आपको मुझे बताना होगा.
2: तो मैं अभी बता दूँ.
1: एक सेकेंड, ये फॉर्म भर देते हैं. क्या नाम है आपका?
2: संजना.
1: संजना, किसका मुर्गा बनवाना है आपको?
2: अपने हस्बैंड का.
1: क्या बात कर रही हैं, और कोई नहीं मिला आपको?
2: फिलहाल अभी कोई और दिमाग में नहीं आ रहा.
1: अच्छा संजना, मुझे प्लीज आप ये बता देंगे कि ये इनको कितना गुस्सा आता है, ताकि मैं उसी हिसाब से इनसे बात करूँ फिर मुर्गा बनाऊँ. बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं?
2: भड़क जाते हैं.
1: अरे बाप रे. तो मुझे संजना प्लीज बता देंगे किस तरह भड़कते हैं ये?
2: अब्यूजिंग वे में. थोड़ा
1: अब्यूजिंग वे में, जैसे कि कैसे?
2: आप मुझे शुरू कीजिए, फिर मैं बताता हूं.
1: ओके चलिए.
3: हेलो सर, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, फलाना बैंक से. सर आपको लोन देना है, दो मिनट दे सकते हैं?
2: नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है.
3: सर थोड़ा सा दो मिनट दे दीजिए यार, क्या बात जाती है आपकी? अरे शर्म किस बात की यार, हम लोन बेच रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए. सर आप एक तो तमीज से बात करिए, आप लोन लेना है ले लीजिए, तमीज से बात करिए, बदतमीज कहीं का.
1: मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरीके से किसी का मुर्गा बनाऊं. और संजना मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा मुर्गा बन चुका है. मैं रेडियो मिर्ची पे.
2: गॉड, मैंने अपना बनवाने के लिए फोन दे दिया था.
1: हम तो किसी का ही बनाए थे, आपके हस्बैंड से ज्यादा हमदर्दी हो गई, किसी दिन उनका ही बनाएंगे. फिलहाल आपका बन गया है. मेरे साथ प्यार से कह दो एक बार, कुकड़ुकू. थैंक यू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
7: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं.
8: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी.
7: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले.
9: अभी न जाओ छोड़ कर.
8: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन. Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
12: Tera kya hoga, Kalia?
13: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार.
12: अब मिर्ची खा.
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: मिर्ची फ्रेश माल.
15: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका.

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 rupee ट्रायल पैक नाउ।
1: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी लाइफ में सब कुछ सेम लगने लगता है, मतलब सेम जॉब, सेम रूटीन, सेम गोल्स, पर फिर भी हम थोड़ा पॉज ले लेते हैं और सोचते हैं कि क्या इसे बेटर बना सकते हैं। और अक्सर जवाब होता है हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बस थोड़ा सा रीथिंक, थोड़ा सा रीसेट और चीज़ें ज़्यादा अलाइन लगने लगती है। आजकल चेंजिंग मार्केट में भी लोग यही कर रहे हैं, जो उनके पास है उसे ही स्मार्टर बनाने की कोशिश। और जब बात घर की आती है तो ये रीथिंक एक स्मार्ट मूव बन सकता है, जिसे हम कहते हैं रीफाइनेंसिंग। और इसी को सही तरीके से कैसे समझे और कब ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, यही बताने आ रहे हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
3: गुड इवनिंग मिचेल, दिस इज योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज, गिविंग यू मॉर्गेज रेट अपडेट्स ड्यूरिंग दिस ड्राइव टाइम। Cloudy and humid, and we saw some rain today. And the U.S. market slide after Fed decision. Mortgage rates held steady this week, giving prospective home buyers little relief, as we are almost in the summer season and selling season. Mortgage rates have drifted lower amid growing uncertainties about the economy. Mortgage application for home purchase were effectively flat. First-time homebuyers, whether on H-1 visa or L-1 visa, nothing to panic about visa status. So buying your dream home, pre-approval is free, advice is free. Call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6%. 20-year fixed mortgage rate, 5.875%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it's lionmtg.com. I would again repeat it. Two products very, very popular nowadays. Investment property, 25% down payment. And you can buy it under an LLC. No income documentation is required. Number two, closed-end second loans. If you already own a home and have equity, we are closing second loans, and the rates are also very aggressive. Friends, once again, buying your dream home or refinancing, please don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. And don't forget to ask us about our zero closing cost refinance option. So once again, Lion Mortgage, buying your dream home or refinancing, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
4: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: बच्चा ये आसन है खर्चा आसन। इसमें बीवी की हर मांग पूरी करने के लिए अपने हाथ और जेब में सामंजस्य बैठाना है। पहले दाया हाथ उठाओ और उसे जेब में डालो, एटीएम कार्ड बाहर निकालो। इस क्रिया को 2-3 बार दोहराओ। ये करने से आपको कमरे के बाहर सोफे पे नहीं लेटना पड़ेगा और खाने में ताने भी नहीं मिलेंगे।
1: तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई कर।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
6: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
7: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
8: Chamakte Sitare 2026.
7: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
9: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
10: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
9: Renew?
10: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
9: What better way to celebrate than with something timeless?
10: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: इट्स 5:30 PM, मिर्ची टाइम चेक, ब्रॉट टू यू बाय आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
14: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
15: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और इंडिया जाने से पहले ना, हम सबके बहुत ही छोटे छोटे अरमान होते हैं, जैसे कि माँ के हाथ का खाना, पुराने दोस्त से मिलना, फैमिली टाइम और 2 हफ्ते की कंप्लीट रिलैक्सेशन। लेकिन फिर फ्लाइट लैंड होती है और रिलैक्सेशन सबसे पहले इमिग्रेशन क्रॉस करके भाग जाता है, क्योंकि यार अगले कुछ दिनों में ना हमें इतने सारे लोग मिलते हैं जितने हमने पूरे अमेरिका में पूरे साल भर देखे भी नहीं है। और हाँ, हर घर में एक सवाल गारंटीड है। नाम अलग हो सकता है, अंकल भी अलग हो सकते हैं, लेकिन सवाल वही होते हैं कि बेटा अमेरिकन डॉलर में कितना कमा लेते हो। तो दोस्तों, आज का मिर्ची योगा लेसन वही है। इसमें कोई आसन आपको नहीं सीखने मिलेगा, इसमें इस सवाल को कैसे टैकल करना है यही आपको सीखने मिलेगा, द सैलरी क्वेश्चन आसना। क्योंकि जैसे ही ये सवाल आए ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए, सीधा आंसर भी नहीं देना है, पहले हल्का सा स्माइल करना है, फिर पानी का एक हाथ सिप ले सकते हो, फिर आसमान की तरफ देखकर एकदम थॉटफुल चेहरा बनाना है और फिर जवाब देना है कि बस अंकल जी आपके आशीर्वाद से पेट भरे उतना ही। एक्सीलेंट। मतलब देखिए, आपने ना पहले लेवल क्लियर कर लिया है और अब दूसरा लेवल तो जरूर आएगा। अच्छा चलो ठीक है बेटा, तो ग्रीन कार्ड मिला, और फिर और एक लेवल तो जरूरी आता है कि बच्चे कब। तो हर सवाल का ना एक ही टेक्निक होता है कि आंखें बंद करनी है, सांस अंदर लेना है, सांस बाहर लेना है, देना है और दिल से बस इतना ही बोलना है कि अंकल जी या आंटी जी बस आपके आशीर्वाद से जल्द ही। तो यही है इंडिया विजिट का योगा, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की नहीं होती है, जवाबों की टेस्ट होती है। और अब आप भी मुझे बताइए दोस्तों कि इंडिया ट्रिप में आपको सबसे ज्यादा किस सवाल ने योगा कराया है, सैलरी, शादी, ग्रीन कार्ड या कुछ और? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और मिर्ची योगा के ऐसे ही चटपटे लेसन आपके लिए आते रहेंगे, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
1: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
2: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
1: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
0: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी कुछ कॉन्सर्ट्स ना सिर्फ कॉन्सर्ट्स नहीं होते, वो यादों का रीयूनियन होता है। एक गाना चलता है और आपको आपका पहला प्यार याद दिला देता है, दूसरा गाना आता है और पुराने दोस्त, लॉन्ग ड्राइव्स और वो रात भर चलने वाली बातें भी याद आ जाती है। और जब बात हो विशाल मिश्रा के कंपोज गानों की, तो यार उनके गाने ना सीधा दिल तक पहुँच जाते हैं। इसीलिए एक्साइटमेंट डबल है क्योंकि इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC प्रेजेंटेशन, और ये होने वाला है ग्रैंड, मैजिकल और ट्रूली अनफॉरगेटेबल, क्योंकि विशाल मिश्रा आ रहे हैं विद पागलपन टूर इन अटलांटिक सिटी। और अगर आपने भी कैसे हुआ पहले भी मैं तुम हो तो या उनके किसी भी गाने को सिर्फ सुना ही नहीं लेकिन महसूस भी किया है, तो ये शाम आपके लिए है दोस्तों। हजारों फैंस एक साथ गाते हुए लिरिक्स, फोन फ्लैश लाइट्स का समंदर और वो गूज बम्स वाला मोमेंट जब पूरा एरिना एक ही सुर में गा रहा होगा। June 26th की शाम को हार्ड रॉक लाइव ईटस एरिना में कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम टिकट मास्टर या फिर साई यूएसए INC फॉर विशाल मिश्रा पागल पर टूर। और सारे जो रेडियो मिर्ची के विशाल मिश्रा फैंस हैं उनके लिए एक बहुत ही खास कॉन्टेस्ट। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है कि विशाल मिश्रा का गाना कैसे हुआ, कौन सी मूवी का है। यू हैव टू टेल मी ऑन माई इंस्टाग्राम, तो बस DM कर दीजिए @RJMirchiSiddhi SIDDHI आपका जवाब, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो @9033647244 9033647244, और लकी विनर्स को मिलेंगे इस अमेजिंग टूर के फ्री टिकट्स। तो दोस्तों विशाल मिश्रा पागल पंटोर, डेट नोट डाउन कर लीजिए, June 26th, वेन्यू हार्ड रॉक लाइव एट ईटस एरिना, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वेन्यू इन द एंटायर न्यू जर्सी। टिकट्स बुक कर लीजिए ticketmaster.com या फिर SIUSAINC। और देखिए दोस्तों, इट्स विशाल मिश्रा पागलपन टूर ब्रॉट टू यू बाय अमित जेटली ऑफ साई यूएसए INC। तो एक ऐसी म्यूजिकल जर्नी होने वाली है जिसकी यादें काफ़ी हफ्तों तक आपके दिमाग में रहेंगी, आपके दिल में रहेंगी। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से अपने टिकट्स बुक कर लीजिए, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: दोस्तों, हर फैमिली के घर में एक कबर्ड होता है जिसमें पुरानी चीजें छुपी होती है। लेकिन सोचो, अगर एक दिन घर में एक डेड बॉडी छुपानी पड़ जाए तो। शाम शादा लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और इस हफ्ते ओटीटी पे सबसे इंटरेस्टिंग बज बना है माँ बहन को लेकर। जी हाँ, फिल्म में माधुरी दीक्षित, तृप्ति दिमरी और धरना दुर्गा एक माँ और दो बेटियों के रोल में नजर आ रही है, जिनकी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ और भी ज्यादा उलझ जाती है जब उनके घर में एक लाश मिल जाती है। डार्क कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और केओस, तीनों एक साथ। और मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात इस मूवी की ये लगती है कि जहाँ हमने माधुरी जी को रोमांस, डांस और ड्रामा में देखा है, लेकिन डार्क कॉमेडी में जब ऑडियंस उन्हें पहली बार देखेंगी ना, एक अलग ही फ्रेश एक्सपीरियंस बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का टोन सस्पेंस से ज़्यादा क्वर्की, फैमिली मैडनेस वाला है। तो आप भी ज़रूर बताना कि माधुरी जी को इस नए अंदाज में देखने के लिए आप कितने बेसब्र हो। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए माधुरी का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, d

0: Mirchi.
1: Buscaba la, buscaba la, sacaba la. ¡Trápala! ¡Murga, murga! ¡La virpa la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है, रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है, क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है, क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है, सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन, आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं
3: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
2: गायब
3: नहीं। मैं कल को
2: फोटो खींचे,
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार, शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब देखिए, केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी,
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
3: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
2: कहाँ होता है बताइए।
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
12: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुँचती हैं।
13: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मटेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
12: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
14: अभी न जाओ छोड़ कर।
13: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
15: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
16: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
15: Renew?
16: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
15: What better way to celebrate than with something timeless?
16: Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
17: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
18: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
17: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धि के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुंदर और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: cocodrilo.
1: Mirchi Yoga Class. Mirchi Yoga Class. परेशानी, आपके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं क्योंकि क्रश को भेजे हुए मैसेजेस के टिक नीले नहीं हो रहे हैं। इसका उपचार है, गहरी सांस लें, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपने हाथों के साथ साथ अपने एक्सपेक्टेशंस को भी नीचे ले आए, क्योंकि तुम्हारी क्रश तुम्हारी लीग से बाहर है ब्रो। औकात में रहो, सुखी रहो। तो इस योग दिवस एक नया आसन ट्राई करो।
2: सेलिब्रेट योगा विथ अस ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
8: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
9: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
10: पहले भी मैं तुमसे मिला।
11: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
12: विशाल मिश्रा,
9: अमित जेटली ऑफ साई USA Inc. presents A Night Larger Than Life, विशाल मिश्रा's पागलपन टूर, फ्राइडे जून 26th, हार्ड रॉक लाइव, ETS अरीना, अटलांटिक सिटी। बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
15: Batting to kafi sare karte hain, Virat ek hi hota hai.
16: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
15: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
17: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: It's 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: दोस्तों, हम सब ने टाइटन की घड़ी देखी है, लेकिन कभी सोचा है कि एक इंडियन वॉच ब्रांड दुनिया के मैप पर कैसी पहुंची? शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जून ओटीटी पर एक सीरीज बहुत ही क्वाइटली बस क्रिएट कर रही है। जी हाँ, मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी। सीरीज में नसीरुद्दीन शाह रिपोर्टली JRD टाटा का रोल निभा रहे हैं और जिम शार माई फेवरेट जर्सिक देसाई का रोल में नजर आ रहे हैं। कहानी बस एक कंपनी की नहीं है, बल्कि उस विजन की है जिसने इंडियन कंज्यूमर ब्रांड को ग्लोबल कॉन्फिडेंस दिया है। और मुझे तो लगता है कि ये स्पेशली ना हम जैसे NRI ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करेगी, क्योंकि जब भी हम कहीं भी मेड इन इंडिया को प्राउडली देखते हैं ना, उसके पीछे का सपना और उसके पीछे की रिस्क जब जानने मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे ये सीरीज बिजनेस स्टोरी कम और एम्बिशन स्टोरी ज़्यादा लगती है, तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपने भी ये सीरीज देखी है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर देखिए तो आपको कैसी लगी। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
4: Chamakte Sitare 2026.
3: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
5: Are you worried about accessing healthcare? Did you know that New York offers affordable health insurance for individuals, families and small businesses? Do not worry about the application. South Asian Council for Social Services enrollment specialists will help you with the process. Our staff speaks over 20 languages and we will help you get affordable healthcare. Call the South Asian Council for Social Services at 718-321-7929 or visit the SACSS office in person at 14302 45th Avenue in Flushing, New York. For more information, visit www.sacssny.org.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि बस 5 लोग जोड़ी और पैसा ही पैसा होगा तो आप क्या करोगे? श्याम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जून ओटीटी रिलीजेस में एक और नाम शामिल हो चुका है। जी हाँ, द पिरामिड स्कीम। और टाइटल सुनते ही लगता है कि कहानी ना पैसों की है, लेकिन असल में कहानी सपनों की है। शो में रणवीर शेरॉय और परमवीर सिंह चीमा नजर आएंगे। टीवीएफ बैक ये जो सीरीज है, ये उन लोगों की दुनिया में ले जाती है जो शॉर्टकट से सक्सेस ढूंढते ढूंढते एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां हर किसी को लगता है कि यार मेरे साथ तो कोई स्कैम नहीं होगा। और शायद वही सबसे डेंजरस लाइन होती है, कि मुझे तो यार इस शो का कॉन्सेप्ट इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये सिर्फ एक स्कैम की स्टोरी नहीं है, ये उस उम्मीद की स्टोरी है जो लोगों को जल्दी अमीर बनाने के वादे पे भरोसा करवा ही देती है। और सच बताओ तो यार, जितना फनी लगता है ना उतना रिलेटेबल भी, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी वो मैसेज जरूर देखा होगा कि यार बस थोड़ी ही इन्वेस्टमेंट है और फिर कुछ साल में कमाल देखिए। तो आप भी बताना दोस्तों, क्या आपको भी लाइफ में कभी फनी या अनबिलीवेबल मनी मेकिंग एडवाइस मिली थी और किससे मिली थी? टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि अक्सर ऐसे एडवाइस देने वाले ना हमारे आसपास के 4 लोग में से ही होते हैं, तो जरूर बताना। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम 3 का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La virba, la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello. सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं यार, ये क्या आपने क्या तमाशा बना रखा है यार? आपकी कंपनी, आप कंपनी का नाम डुबवाएंगे?
2: क्या हो गया
3: सर? मोबाइल में क्या आफत खड़ी कर दी है? मैंने अपने बड़े बच्चे को भेजा था, मैंने कहा बच्चा ठीक करा ला मोबाइल, वो लेके आया है, क्या कर दिया आपने?
2: क्या हुआ, क्या है
3: सर? एक तो इसमें किसी की कॉल नहीं लग रही, ना कॉल आ रही है ना कॉल जा रही है।
2: कब दिया था आपने?
3: तो 15 दिन पहले मोबाइल दिया है।
2: क्या प्रॉब्लम, क्या है?
3: चंद्रो फोन लेके आ,
2: डिस्प्ले आ रहा है।
3: डिस्प्ले आ रहा है? डिस्प्ले से क्या होता है यार?
2: फोन आ रहे हैं और ओके।
3: अरे किसी का नहीं आ रहा यार, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ।
2: बेल बज रही है।
3: अरे बेल, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सुनिए जरा, बेल बज रही है, वो अजीब सी बेल है, मैंने तो किसी का पर्सनलाइज किया नहीं आज तक। इधर रख, ये क्या है यार? ये
2: अरे आपने लिया कहाँ से था?
3: ये गुब्बारे वाले से लिया है।
2: तो आपका दिमाग खराब है सर, यहाँ पे फोन कर रहे हैं आप?
3: ये दिमाग खराब किसका कह रहे हैं यार आप?
2: गुब्बारे वाले से आप फोन लेकर यहाँ पे तब से मेरे को परेशान कर रहे हैं
3: यार। आप पहले मना कर देते यहाँ पे गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: थोड़ी ना
3: मैंने आपने नहीं बताया आपको, पहले बोलना चाहिए था यार आपको।
2: गुब्बारे वाला फोन हमें बता रहे,
3: गुब्बारे वाला फोन यार, बच्चा लेके आया, मैं कोई बड़ा बच्चा लेके आया, उसने आपने कहा मोबाइल ठीक होते हैं, गुब्बारे वाले आपने लिखा गुब्बारे वाले ठीक नहीं होते। कमाल है यार, पता नहीं कैसे चला रहे हैं सर्विस सेंटर, आपको लिखना चाहिए गुब्बारे वाले फोन ठीक नहीं होते।
2: तो आप हमें फोन कर रहे हैं वाले से फोन लेकर, और वहीं जाके रिपेयर कराई,
3: वहीं जाके रिपेयर कराएंगे तो ये पहले नहीं बोल सकते थे?
2: फोन थोड़ी ना होते
3: तो फोन ठीक नहीं होते, फोन नहीं होते तो
2: फोन मत करिए,
3: यहाँ फोन मत करिए यार।
4: गुब्बारे वाले को कहाँ ढूंढूं भाई?
2: हेलो
4: भाई सर, प्लीज फोन मत काटिएगा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने छोटा सा मजाक किया है आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया मैंने।
2: अरे सर काम का टाइम है,
4: सर आप बुरा ना माने, प्लीज हंस के मेरे साथ कह दीजिए
2: कुकड़ू को।
4: एक सेकंड, मेरा फोन भी आ गया। हेलो, हाँ कुकड़ू को बोल दिया।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
11: पहले भी मैं तुमसे मिला।
12: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नन अदर देन विशाल मिश्रा।
13: विशाल मिश्रा,
14: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour, Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
15: Oh no!
16: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
17: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
18: Chamakte Sitare 2026.
17: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianikaacademy.com.
19: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
0: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
1: Listener MI, back to back gana sunega.
9: Back to back gana sunega.
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
13: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का हंगामा आ रहा है सेन्योरिटा गाने से, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। यार जब हम स्क्रीन पे ऋतिक, फरहान और अभय देओल को स्पेन में मस्ती करते हुए गाना गाते हुए देखते हैं तो फुल ऑन ट्रैवल वाइब्स तो मिलते हैं, पर पर्दे के पीछे ये गाना एक प्लान्ड एक्सपीरियंस था। जी हाँ, एक्टर्स ने स्पैनिश डांस और रिदम पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी और सिंगिंग पोर्शंस के लिए भी रिहर्सल्स हुए थे। रियल लोकेशंस पर शूट करना मतलब टाइमिंग, लाइट और पब्लिक कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमें बहुत ही स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप लग रही थी ना, वो एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग का रिजल्ट था। तो क्या आप समझ गए कि बॉलीवुड में यार फन भी ना पूरे स्केड्यूल पे होता है, ये फन अनस्केड्यूल्ड वाला पार्ट सिर्फ हम रियल लाइफ लोगों के साथ होता है। तो चलिए ऐसे ही पर्दे के पीछे किसके किससे जानने के लिए मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, DM मी योर फेवरेट सॉन्ग और उसके पर्दे के पीछे की बातें, मैं बताऊंगी सिर्फ आपको। तब तक के लिए सुनते हैं सेन्योरिटा फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। श्याम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया यार, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि कभी वो दाए कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin. Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com. बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये, ये, ये, ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।